0: गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
2: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
3: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
4: कितनी लंबी लिस्ट है?
3: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
4: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
5: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: एक और लड्डू ले लो।
9: थोड़ी और बिरयानी।
8: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
10: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
11: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
12: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

And guys, as promised, मैं आपके लिए नया गाना लाई हूँ. This one's called Re Bavdi from the movie Don't Be Shy. Of course, composed by Ram Sampath in the voice of Sona Mahapatra. And in case you're wondering, नहीं कौन सी मूवी है यार, ये मूवी अभी रिलीज होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है. 5 दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ है. And it features Alia Bhatt too. So definitely go check it out when it's out in the world.

तो गाइज आपका ट्यूसडे कैसा जा रहा है? मेरा तो सही जा रहा है. आई मीन इट वॉज प्रेटी गुड, ट्रैफिक नहीं था, लाइफ इज़ प्रेटी अमेजिंग. ओके, लेकिन यू नो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ अबाउट टू स्टार्ट अगेन, राइट? तो अगर आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है गाड़ी वाड़ी की एंड यू आर लाइक जस्ट टालोइंग इट कि नहीं, बाद में ठीक कराएंगे, अभी करा लो, बिकॉज अक्टूबर में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता है. आई डोंट नो इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ ऑल दैट और नॉट. आई एम डेफिनेटली बिलीवर ऑफ ऑल दैट. आई एम दैट वू वू गर्ल हु बिलीव्स इन ऑल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो मेरे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, हमेशा ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड. सो आई ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस. आई एम जस्ट टेलिंग यू, मे बी यू वॉन्ट डू द सेम. ओके, ऑलराइट गाइज, आई एम गोना प्ले यू वन सॉन्ग. आपको बाय द वे गाना बजाने से पहले आपको पता है ना, सोनू निगम इज परफॉर्मिंग दिस सैटरडे एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. येस, दिस सैटरडे एट 8:30 PM. तो अगर आपने टिकट्स नहीं लिए हैं जल्दी जल्दी ले लो यार, दे आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. समवेयर आई रेड दे आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट एज वेल. ऑल द $45 टिकट्स, $55 टिकट्स जो भी थी, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. सो यू मे जस्ट हैव ओनली द एक्सपेंसिव ऑप्शन अवेलेबल, बट यू नो वट, इट डजेंट मैटर. इफ यू लव द आर्टिस्ट एंड इफ यू लव म्यूजिक देन गो फॉर इट. ओके, चेक आउट ऑनलाइन एट टिकट मास्टर, मे बी यू कैन स्टिल गेट सम टिकट्स. ओके, और यू कैन कॉल 855-360-SHOWS फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. येस, सोनू निगम इज परफॉर्मिंग दिस सैटरडे एट 8:30 PM. So, I'm going to play you a song by Sonu Nigam, and after that, we're going to go into a short break after the song, and I will see you after the commercial break. Bye.

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: दैट्स फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार, फेमिलियर इंडियन फ्लेवर्स विद अ फ्यूजन ट्विस्ट। ऑलरेडी लव्ड इन रिचर्डसन, नाउ द फ्लेवर स्टोरी मूव्स टू अर्विंग। एंजॉय एन एवरीडे लंच बफे विद 25 आइटम्स, चाट्स, तंदूर, बिरयानी, फ्यूजन फेवरेट्स एंड प्लेंटी मोर टू डिस्कवर। फ्यूजन रिपब्लिक नाउ एट 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड, अर्विंग। फेमिलियर फ्लेवर्स, फैबुलस फ्यूजन।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
17: इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

तो गाइज एज प्रोमिस मैं आज मैंने आपको बोला था आई एम गोना ब्रिंग सम न्यू म्यूजिक टू यू बेल. इसके पहले आपने जो गाना सुना दैट वॉज नॉट न्यू, दैट्स एक्चुअली 15 ईयर्स ओल्ड. लेकिन उसके पहले बिल्कुल ब्रेक के पहले मैंने गाना बजाया था फ्रॉम एन अपकमिंग मूवी. आई एम गोना प्ले यू अनदर सॉन्ग. ऑफकोर्स थैंक्स टू माई लिसनर्स एंड माई फैंस आउट देयर. यू गाइज वेन यू गिव मी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट समहाउ आई मे हैव मिस्ड ऑन माई रेडार, आई लव इट बिकॉज देन आई कैन शेयर विद एवरी वन एल्स. सो if you want to share new music with me that I have not heard yet, or if you want, you know, just to share, play a request or something, you can also text me on Instagram. You can DM me, you can follow me on Instagram and DM me and tell me a request and I'll be more than happy to play it for you. My Instagram handle is ipi.music. Thank you to Zimran who sent me this track subah subah ki bhai mera gana please zarur bajana. कि ये गाना नया नया आया है, आज के दिन रिलीज हुआ है. इट लिटरली रिलीज वन डे अगो. प्लीज प्ले इट. सो आई टोल्ड ज़िमरान, आई सेड ब्रो आई विल प्ले इट एट 7:30 एज प्रॉमिस. भाई 7:40 हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट चलता ही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना. तो दिस इज ठुमक ठुमक फ्रॉम द मूवी द वन. आई थिंक इट्स सपोज टू बी वन, लेकिन दो वी के क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता. अगर आपको पता है You can tell me, call me up and let me know. 972-235-5555 from this new movie called The Vavan. Let's play.

0: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
1: लाइन मार रही हो। तो गाई, अगर ऐसे ही ठुमकते ठुमकते वीकेंड भी आ जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अगर वीकेंड आ गया है एंड यू आर फिगरिंग आउट आज क्या बनाए वीकेंड पे खाने में, चलो बाहर चलते हैं। यू शुड डेफिनेटली गो ट्राई आउट द फ्लेवर लाउंज बिकॉज दे हैव देयर वीकेंड लंच बफे दैट फीचर्स माउथ वाटरिंग डिशेज दैट यू आर गोना वांट टू कीप गोइंग बैक टू। दे हैव अ लाइव काउंटर, they have chef special, fresh flavors, all of this, everything for just $24.99. Saturday Sunday ko buffet hota hai from 12 PM to 3 PM, so make sure you definitely go check it out. And they have a new location in Frisco at 5855 Preston Road, Frisco. Flavor Lounge, good food, great memories. Aapke liye ye next gana.
2: Aisa laga to nahi, but that's fine. Main dil mein aata hu. समझ में नहीं,
3: कुछ डायलॉग सिर्फ सलमान खान पे अच्छे लगते हैं, सब पे नहीं।
1: दिस सॉन्ग इज ऑल्सो फ्रॉम एन अपकमिंग मूवी, ऑफकोर्स कंपोज बाय द वन एंड ओनली अमित त्रिवेदी, एंड द मूवी इज कॉल्ड वाइब, ओके, एंड इट्स अ न्यू मूवी विच फीचर्स कुणाल खेमू, वंशिका धीर, सो डेफिनेटली चेक इट आउट व्हेन इट रिलीजेस।

तो गाइज मैंने वो गाना इसीलिए पॉज किया बिकॉज आई वांट टू प्ले यू अ डिफरेंट सॉन्ग टुडे. दिस वन इज कॉल्ड टॉक्सिक. ओके, इट इज फ्रॉम द मूवी, इट इज फ्रॉम द मूवी रॉकिंग, एंड इट इज कंपोज्ड एंड अरेंज्ड बाय विशाल मिश्रा, एंड ऑफ कोर्स द लिरिक्स एंड द सिंगर इज हनीता भामरी. नाउ this features Yash and Kiara Advani. Actually, the video also features Vicky Kaushal. लेकिन एक fun fact पता क्या है, ये भी 11 दिन पहले ही रिलीज हुआ है गाना, ठीक है. Fun fact पता क्या है, आप सोच रहे होगे मैं फेंकती रहती हूँ ऐसे, लेकिन नहीं है. जो हनीता भामरी जो सिंगर है, जब मैं इंडिया में थी अराउंड 10 साल पहले, हनीता वॉज एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ माइन इन गुड़गांव. And it was a music school called One World School of Music. और वहाँ पर मैं सिखाती थी. I used to teach music there. And Hanita was my student then. उसके बाद she used to do private voice lessons with me, singing lessons. And it's so amazing to see her sing and write music for this incredible Bollywood movie. And it gives me great joy to see all my students succeeding so well. तो आप ये गाना enjoy करिए. This one's called Toxic.

0: चैलेंज है।
1: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com। वी नीड टू टॉक।
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
4: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
5: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
5: यस, Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, और एक delicious buffet जहाँ choices ही choices हैं।
4: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
1: Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy, together.
6: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
7: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है, तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
6: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
8: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
6: The One, Force of the Forest,
9: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
6: On 25th September in cinemas near you.

नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी

0: And guys, we are back. This is Ippy the Hippie. And I just realized कि मैं तो यहाँ पे 7 बजे से आई हुई हूँ. 8:08 हो चुके हैं. मैंने आज तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. ले फेल ही हो गया थोड़ा सा. मैं भूल जाती हूँ कई बार. ऐसे आपसे बात करने में इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि आई कम्प्लीटली फॉरगेट कि भाई मुझे अपना नाम भी बोलना होता है. गाइज, यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी. वी आर बैक. मेरी एक फ्रेंड है वत्सला, जो मेरी रेडियो के थ्रू ही फ्रेंड बनी. कहती हूँ हमें बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू से एंड वी आर बैक. यस यू गाइज, वी आर बैक एंड यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM. एंड दिस इज माई शो. An evening in Dallas. So guys, without further ado, let's go ahead and play our giveaway game. So, giveaway game kya hai? Giveaway game very simple hai. Main aapko bolungi ek movie ki story, theek hai? एम इसे अपने स्टाइल में मस्ती मजाक के साथ मैं बोलूंगी. आपको उस मूवी का नाम गेस करना है. एंड दैट्स अबाउट इट. क्योंकि ये वाला गिव अवे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. मतलब अगर आपने मूवीज देखी है अपनी तो कोई मुश्किल ही नहीं होना चाहिए. हम तो खेल रहे हैं, इतनी सारी मूवीज होती है. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन पहले ये तो बता दूँ पहला वाला गिव अवे है कहाँ से. पहला वाला गिव अवे इज फ्रॉम द वन एंड ओनली फन Pizza Kitchen. That's right, you guys. And I know a lot of you people are like waiting for that Fun Pizza Kitchen ka giveaway. Kai log mujhe aake bolte hain, yaar Fun Pizza Kitchen wala giveaway kab hoga? Bhai, aa gaya hai mauka. Fun Pizza Kitchen mein kya milega aapko? Mexican inspired pizzas. They have their new menu, which is Mexican inspired pizzas, Fiesta Veggie, Pollo Loco, Seafood Packed, Senior Camarón, aur bhi bahut kuch. And starting this weekend, stop it you guys, this is amazing, okay? This weekend say Fun Pizza Kitchen will be open till, drum roll please, till 3 AM. So agar aapko wo midnight ya after midnight cravings hai, you know, and you have the munchies or you're out partying and then you're like, guys, kuch greasy sa, kuch amazing sa, kuch cheesy sa khane ka mood ho raha hai, then Fun जस्ट ड्राइव टू फन पिज्जा किचन. क्योंकि 2 बजे तक तो वैसे ही ज्यादा चीजें नहीं खुली रहती. ये तो 3 बजे तक खुला है. एंड इट इज परफेक्ट फॉर दोज लेट नाइट्स आफ्टर गरबा कॉन्सर्ट्स एंड शोज अराउंड टाउन. तो अगर आप सोनू निगम के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और आपको पता नहीं हो रहा कि भाई अब भूख लगी है, रात के 10 बज चुके हैं, आई डोंट नो वेयर टू ईट, व्हाट टू ईट, देन दिस इज व्हाई यू नीड टू गो डाउन टू. ओके, न्यू फ्लेवर्स, लेट नाइट क्रेविंग्स, ऑल ऑफ दिस इज सॉर्टेड. आप जीत सकते हैं $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग द सिंपल क्वेश्चन. तो मैं बातें कम करती हूँ. माई नंबर इज 9722355555 एंड लेट्स प्ले द गेम. तो वंस अपॉन अ टाइम, आपको मूवी का नाम गेस करना है. ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस वन गाय, ही वाज लाइक सुपर डुपर रिच एंड देन ही फॉल्स इन लव विद दिस गर्ल. अब वो लड़की के साथ दे यू नो दे गेट मैरिड एंड दिस गाय सम काइंड ऑफ अ राजा महाराजा टाइप बंदा. अब वो जो लड़की से उसने शादी करी, शी टर्न्ड आउट टू बी द अल्टीमेट गोल्ड डिगर. एंड आई मीन लाइक क्रिमिनल मास्टर माइंड गोल्ड डिगर, नॉट जस्ट अ गोल्ड डिगर. उसने इस बंदे को प्यार में उलझा के बेचारे बंदे का मर्डर ही कर दिया. ओह नो, सो मच ट्रेजेडी. फिर उस लड़की की जो मम्मी और बहन थी उसको पैलेस से निकाल दिया. देन शी स्टार्टेड लिविंग इन दैट पैलेस ऑल बाय हरसेल्फ विद हर न्यू बॉयफ्रेंड. And this is, you know what I'm saying, the ultimate gold digger. Yes, that is the ultimate gold digger. Then what happens after like 25-30 years, ye jo banda hai jiska murder ho chuka tha, wo dobara, he's born, okay, in another family. And this time he becomes a superstar singer. Guys, abhi tak movie nahi guess kari, come on. Abhi to maine puri story bol di yaar. वो 25-30 साल आ गया. कॉल हमारा पहला एंड लेट्स सी हु द कॉलर इज.
1: हेलो,
0: हाय, कैन यू टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड.
1: ओके, सो दिस मूवी इज नेम इज कर्ज.
0: वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. पर पहले अपना नाम तो बताइए.
1: मेरा नाम है अनीला.
0: अनीला जी, कांग्रेचुलेशंस. सब लोग भाई अनीला जी के लिए तालियां बजाओ. एक जन हम भी पूरे स्टूडियो वाली तालियां बजाते हैं.
1: थैंक यू.
0: मतलब नेक्स्ट
1: थैंक
0: लेवल
1: यू, थैंक यू
0: तालियां
1: सो
0: हैं.
1: मच.
0: ऑफ कोर्स. तो अनिला जी प्लीज स्टे ऑन द लाइन. ठीक है, मैं गाना बजाती हूँ और उसके बाद मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ आफ्टर दैट. ओके, जस्ट स्टे ऑन द लाइन.
1: ओके, नो प्रॉब्लम.
0: ओके
1: ओके ओके, थैंक यू.
0: यारो दोस्तों, आप लोग इसी कर्ज फिल्म का गाना सुनिए, द ओ जी ओम शांति ओम, एंड आई विल टॉक टू यू आफ्टर द
2: सॉन्ग. इन्फॉर्मेशन लेंगे.
3: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
4: किया.
3: कभी किसी को

0: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
1: कितनी लंबी लिस्ट है?
0: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
1: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
2: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLworldwide.com।
3: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
3: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
5: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25+ डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen

0: And we have our first caller. Let's see. Hi, can you hear me?
1: Hello?
0: Hi, can you hear me?
1: Yeah.
0: Okay, पहले तो अपना नाम बताइए and दूसरा आप इस question का answer बताइए.
1: Okay. मेरा नाम Himanshu Patel.
0: Himanshu Patel जी, go for it. Who is the original actress जिस पे ये गाना picturize किया गया था?
1: अपना वो dance वाली क्या नाम अभी वो सलीम खान से शादी किया था, नाम भूल गया उसका, एक मिनट है रुकना.
0: ये ना रिसर्च पहले कर लेनी पड़ती है. वैसे
1: आप नहीं नहीं वो हम करते हैं ना, वही पास सुनते हैं वही करते हैं.
0: हाँ,
1: वो रिसर्च वाली में तो सही बता देते हैं.
0: हाँ,
1: वो आई थी दूसरी कंट्री, मलेशिया कहाँ से आई थी वो,
0: नहीं नाम ही तो बताना है. पर आप सही बोल रहे हो, सलीम खान की बीवी है वो, उनकी वाइफ है, लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा.
1: नाम बताना पड़ेगा लेकिन उसका नाम
0: चलिए आपके पास 30 सेकेंड है, नहीं तो फिर मुझे दूसरा कॉल उठाना पड़ेगा. ठीक है, आप रिसर्च कर लो, मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ आपको, रिसर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं.
1: ओके, ऑलराइट.
0: ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो, यू हैव 30 सेकेंड्स.
1: ओके, नो प्रॉब्लम.
0: चलो, आप रिसर्च कर रहे हो?
1: या
0: ओके ओके, आप यू कैन जस्ट टाइप इट इन गूगल, सलीम खान की बीवी, एंड देन यू शुड गेट द आंसर. और अगर नहीं है तो मुझे दूसरा कॉलर लेना पड़ेगा. एंड आपके पास 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड ये बजिया मेरा नाम. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम हिमांशु जी, थैंक यू फॉर ट्राइंग. ओके गाइज, द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन एंड वी हैव आवर सेकंड कॉलर. ओके, हाय, कैन यू हियर मी?
2: यस, हेलो.
0: हेलो, अपना नाम बताइए पहले तो.
2: अनिला.
0: अनिला जी, आपने तो पहले एक आंसर कर दिया है, मैं दो गिव अवे आपको तो नहीं दे सकती. हैव टू टेक द सेकंड नेक्स्ट कॉलर. ठीक है,
2: ओके, नो प्रॉब्लम
0: गाइस, द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन एंड हियर वी गो, नेक्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
3: यस, आई कैन हियर यू नाउ.
0: ओके ग्रेट, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
3: माय नेम इज संजय जैन.
0: संजय जैन जी, ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हु इज द एक्ट्रेस जिस पे ये गाना पिक्चराइज किया गया था?
3: जिनत अमान.
0: ओह, रॉन्ग आंसर, सो क्लोज.
3: हेलेन
0: है. चलो, हेलेन है. आपने सारे गाने एक्ट्रेसेस के नाम बोल दिए. चलो, क्योंकि सेकंड ट्राई पे आपने सही जवाब दे दिया, देन दैट्स व्हाई आई विल गिव इट टू यू. कोई बात नहीं. सो संजय जी, स्टे ऑन द लाइन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजय जी. आफ्टर 1 2 3 ट्राइज ही फाइनली गॉट इट, फटाफट से नाम बोल दिया. गुड, तो संजय प्लीज स्टे ऑन द लाइन, आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल कम एंड टेक योर इन्फॉर्मेशन. ओके,
3: श्योर, नो वरी, थैंक यू
0: गाइस, यू एंजॉय दिस सॉन्ग.

But yeah, as much as I love the folk bhasha in a lot of these Bollywood songs, but sometimes these writers really need to think about. अब उसने लव यू की जगह उसने लिखा हुआ है लव जू, मतलब उसको जुए से इतनी प्यार है कि वो लव जू बोल रहा है. लाइक तुम मेरे सर पे एकदम जुए जैसी रेंग रही हो, मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार है. यू आर नॉट जस्ट नाइस, यू आर लाइस. आई लव यू सो लाइसली. भाई ऐसे ऐसे जोक्स आपको सुनने को मिलेंगे सिर्फ मेरे ही मुंह से, और कहीं नहीं मिलेगा आपको. एंजॉय.

0: गाइस हम अभी ब्रेक में जाने वाले हैं. इन अबाउट 5 seconds आई विल सी यू शॉर्टली. ओके कम बैक बिकॉज वी
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 Pilot Point Texas, simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2 Sanger Texas, powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja,
2: in association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
6: अरे सारे तो सेम है.
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
6: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
11: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
12: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
13: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
12: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
13: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
14: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
15: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट

0: राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पानेशिया।
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

तो गाइज वेलकम बैक, दिस इज इपी द हिपी एंड यू गाइज आर स्टिल लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम. इट इज 9:11 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ फॉर ओनली अनदर मे बी लाइक 45 मिनट्स. तो गाइज लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. ओके, तो गाइज जैसे हम लोग बात करते हैं, वट इज दिस सो कॉल्ड कोट एंड कोट मिड लाइफ क्राइसिस. येस, आप 25 के हो, यू नो यू आर थिंकिंग लाइक ओ माई गॉड आई हैव माई इंटायर लाइफ टू लिव, और देखते ही देखते मतलब यू रीच 45 एंड यू नो लाइक अरे जिंदगी कहाँ गई, पता भी नहीं चला. आई मीन आई फेल्ट लाइक आई वाज लाइक 25 लाइक यस्टरडे, राइट? देयर इज समथिंग रियल गोइंग ऑन इन दिस सो कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस की मिथ. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट या जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सारे ये कहते हैं देयर इज समथिंग नोन एज लाइफ की ना एक यू कर्व होती है. उसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ. सो यू कर्व में होता है आपकी लाइफ ऊपर ऊपर जाती रहती है, फिर यू टर्न मार के फिर वो वापस आ जाती है, एंड देन इट आई मीन रीचेज अ स्टैग्नेंसी. सो वॉट इज द स्टैग्नेंसी? तो मेन चीज जो ये है, द रीजन वाई इट टेक्स अ यू कर्व, उसके बाद वॉट कॉजेज द डिप इज बिकॉज फर्स्ट एक तो आप 40 एज में ना मैक्सिमम जो पीक लोड होता है, चाहे वो करियर हो, बच्चे हो, एजिंग पेरेंट्स, ओके, एट द सेम टाइम यू हैव मॉर्गेजेस, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑल एट वंस. ओके, इट्स दैट मिडिल फेज वेयर यू गेटिंग द प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर. देन देर इज द एक्सपेक्टेशन गैप कि आप 25 में थे, यू हैड इमेजिन अ पर्टिकुलर लाइफ कि अरे बाय 45 मेरे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, माँ होगी, सब कुछ होगा. लेकिन मे बी द रियालिटी स्ट्रक एंड देन यू हैड लॉट्स ऑफ बिल्स टू पे. लेकिन आपके सारे सपने शायद सच नहीं हो पाए. मे बी यू कैन टेक अ वेकेशन वंस अ ईयर और समथिंग विद योर किड्स, बट देन स्टिल देयर इज दैट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेट. मे बी द वीजा सिचुएशन डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू, एंड मे बी यू नो समवन, और मे बी यू नो समवन हु वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु ड्रोव ऑल द वे टू द एयरपोर्ट, लेफ्ट देयर कीज इन द कार, left it running and saying that cannot make payments, moved back to India. You know what I'm talking about, right? Yes, these things are not in our control, okay? And then you realize, bhai, time is not infinite. Time ki to ek thodi limit hoti hai. It is finite. And the so-called someday list, it starts to feel like a never happening list. So, what do we do? Here is my argument, aur main चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से सुन लो, ठीक है? बिकॉज मे बी यू रिलेट टू इट, मे बी यू डोंट. अ लॉट ऑफ पीपल, व्हाट पीपल कॉल्स मिड लाइफ क्राइसिस इज रियली बेसिकली अ डिलेड इनवॉइस फॉर डिसीजंस दैट वर नेवर मेड इन योर 30s. जो अब 30s में आपको जो काम करना चाहिए था वो चीज नहीं करते हैं जब, तो 40s में आके उसका प्रेशर लगता है कि ओ नो ब्रो टाइम तो खत्म हो गया, 10 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, एंड आई नेवर गॉट टू माई लिस्ट. ओके, द फ्रेंडशिप्स दैट यू डिड नॉट कीप अप विथ, यू नो द बॉडी दैट यू डिड नॉट ट्रेन बिकॉज इन योर 30s यू केप्ट थिंकिंग यार आज वीकेंड पे पार्टी कर लेते हैं, वर्कआउट कल करेंगे, ठीक है, ये वाली चीजें. या फिर यू डिड नॉट कट द अमाउंट ऑफ शुगर यू वर कंज्यूमिंग आफ्टर एवरी मील. ओके, द क्वेश्चन इज कि यू नेवर आस्क योर सेल्फ दैट कि 30s में वॉट डू यू रियली वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ, इज इज अ करियर योर सेल्फ सी योर सेल्फ बींग इन, डू यू सी योर सेल्फ बींग लाइक आई मीन आई नो हम देसी हैं, नन ऑफ द देसीज आर इन लाइक कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स और व्हाटएवर, बट से फॉर एग्जाम्पल यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ जॉब, इज दैट द करियर दैट यू ऑलवेज इमेजिन? या फिर मे बी यू वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेशनल स्काई डाइवर, आई डोंट नो, दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ. The habits that were made on autopilot, सुबह उठ के ही फोन पे स्क्रोल करना, डूम स्क्रोल करना, it all comes due at once and in the same years when life is the most demanding. तो ये सारी चीजें जो होती है 40s में जाके हमें realize होता है, ओ ब्रो हमने तो ये सारी चीजें करी नहीं थी, मैं तो कितना कुछ सोचा था, I had to do this, but we never got to it because you know you just thought, oh I have time on my hands.

और बैक। तो भाई ये सब बात करते करते एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर है या कोई भी बिजनेस ओनर है एक्चुअली, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन यू हैव टू ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, बिकॉज दे आर हेल्पिंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स। कॉल 844-428-2808। दे प्रोवाइड हेल्प विद कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन। सो इफ यू हैव अ शॉप और अ 7-Eleven और सम काइंड ऑफ बिजनेस समवेयर, दिस इज वॉट यू नीड टू डू। तारा एनर्जी डॉट कॉम। ओके, जस्ट चेक दम आउट एंड मे बी दे कैन हेल्प यू आउट।

देता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

भाई पैशन से याद आया, अगर आप हेल्थ से याद आया एक्चुअली. इफ़ यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल लिविंग इन अमेरिका विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, यू माइट बी इन फॉर अ सरप्राइज, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ रियली ट्रिकी ओवर हियर एंड हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स वाई पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट. इट्स लाइक अ प्लान फॉर $85 अ मंथ विच गिव्स यू प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ. कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस .com. रिमेंबर दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स लाइक अ प्लान. देर आर एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, सो गिव दम अ कॉल, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट.

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा फैन हूं।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Bindas bolo, bolo bolo bolo, bindas bolo.
9: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
10: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
11: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: कितने आदमी थे?
1: सर का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Kaun hai ye log? कहाँ से आते हैं
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं

जिंदगी के कई रंग। फनीशा रेडियो के संग 104.1।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice. Sathiya!
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
3: तुमसे मिलके दिल का है.
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: कभी कभी
1: नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बजाओ, लाओ।
1: गीतों से मियां तानसेन कानों में शहद तो भरा जा सकता है, लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ जब आओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो, और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फनीशा रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 97

0: तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
1: रुको जरा, सबर करो.
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. Stay tuned to Phonesia.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: What's up, ladies? Have you met my friend Harry?

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: रुको जरा, सबर करो।
4: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Phonesia.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: पंडित जी दूल्हा है दुल्हन है हम हवन लगवा के फेरे ले लें
2: अरे मैं पंडित दिखता हूँ हूँ नहीं मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: एक बार जो मैंने commitment कर दी, तो फिर सिर्फ Funasia ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor. And you're listening to Funasia Radio.
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
5: लैपटॉप में।
4: इन्वेस्टमेंट?
5: गूगल ड्राइव।
4: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
5: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
4: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: It's the time to clock out.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
13: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
14: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
13: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
15: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
16: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
16: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
15: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
17: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
18: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
17: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
19: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
17: The One, Force of the Forest,
20: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
17: On 25th September in cinemas near you.

0: what, Asian Americans? We could be the ones who killed it. And it is going down in federal court right
1: now. Hasan Minhaj was born on today's date in 1985. The American comedian whose work explores Indian culture and anti-Muslim bias hosted the Netflix comedy talk show called Patriot Act.
0: The NBA in the 1950s. Really?
2: कहाँ गया कहाँ रखा था सुनो ना मेरा वो वाला सेट कहाँ है
3: कौन सा
2: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
3: अरे सारे तो सेम है
2: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
3: ओ हाँ ये तो अलग है
4: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
6: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
5: Aakhir kya hai is biryani mein?
6: Dam mein narmi, masalon mein jadoo, aur har niwale mein nawabi swaad.
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts, and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: अरे यार घर मिल गया
9: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
4: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर वो सिर्फ घर नहीं दिखाते हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी
9: सीरियसली अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी
4: बिल्कुल विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
12: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट

0: It is right now 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
6: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
5: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
9: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
10: डील कहाँ?
9: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
1: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: अजी सुनते हो?
16: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
17: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.
18: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो.
19: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
0: All right, let's get started with this final hour of our program on this lovely Wednesday morning. It's the 23rd of September and it is the first full day of autumn. We touched 96 yesterday, probably today also about the same. Our heat index can go up to 101 and we are under an air quality alert. 4 inches of rain deficit is what we have right now, but I don't think we're getting any rain till next week. And then it'll also be feeling more like autumn, not this week, but hopefully next week. The number here in the studios is 972-235-5555 as we move on with our program.

0: No matter what language it is in, it means the depth of love. And with that, ladies and gentlemen, I'm going to round off my show for today, hoping you enjoyed it as much as I love bringing it to you. Rimita is coming on. It's 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकनी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
7: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
7: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
18: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

0: That's right.
1: वेंसडे की सुबह की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए, अगर हो तो ऐसे ही हो. लेट्स डू सम बल्ले बल्ले. गुड मॉर्निंग DFW. एज आई सेड, वेंसडे मॉर्निंग है एंड दिस इज रमिता टू हर शो एंड आई वेलकम यू टू ऑल टू माय शो गप शप गली ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो. और वेंसडे का मतलब टुडे वी चेक के दुनिया में चल क्या रहा है. आई नो थोड़ा मिडवीक मोटिवेशन चाहिए हमको, जो दो दिन हमने काम कर लिया अपने ऑफिस में या घर में या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में. अगले दो दिन आपका कैसा बीतेगा इस वीक, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ये वेंसडे. तो थोड़ा सा हम लाइट इस वेंसडे के माहौल को रखेंगे, क्योंकि गॉसिप चलेगा बहुत सारी. बॉलीवुड में क्या चल रहा है, इंटरनेट ने पिछले 24 घंटों में कौन सी नई चीज़ को इम्पॉर्टेंट बना दिया, सारी गपशप होगी इस गपशप गली में. बिकॉज सीरियसली सुबह फोन खोलो तो कभी लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ हैपनिंग है. यू नो कल नेशनल अवार्ड्स के जो अनाउंस हुए थे वो अवार्ड सेरेमनी फुलफिल हुए हैं, नए मूवीज के ट्रेलर्स निकले हैं, सेलिब्रिटीज न्यूज भी है. और फिर सडनली एक न्यूज ने मुझे इस गरबा सीजन में बहुत ही फैसिनेट किया है, जो कि मैं आगे इस शो में शेयर करूंगी बताऊंगी. तो बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कल इंडियन सिनेमा ने, जैसे कि मैंने कहा, एक प्रिटी बिग इवनिंग थी. द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, कुछ विंस की स्टोरीज मुझे बहुत दिल, आई नो यू, इट हैज टच्ड माय हार्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है. सो विल डिस्कस ऑल अबाउट इट. कॉफी रेडी रखो, क्योंकि वेंसडे की फ्रेश गपशप ऑफिशियली बिगिंस नाउ. लेट्स शेक द वाइब.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
6: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में।
6: इन्वेस्टमेंट?
7: गूगल ड्राइव।
6: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
12: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezaar कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

जैसे कि मैंने कहा था, एक छोटे से गाने के बाद मैं आपको इनलाइटन करूंगी अबाउट योर सर्टेन हेल्थ केयर अपग्रेड्स जो कि आप अपने लिए ले सकते हो विद द पैशन हेल्थ डायरेक्ट स्कीम ओनली एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. यू नो, आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ इज आउट ऑफ योर नेटवर्क, तो आपको मिल सकता है अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. अब उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? उसमें इंक्लूडेड है आपका प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. बट मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, तो एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड. तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर वालों से आप पूछिए, जिसके लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है या कॉल करना है इन द नंबर 214-666-6259. दैट्स 214-666-6259. और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com. प्लीज माइंड दिस, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस. और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की अगर बात करें तो दे आर लोकेटेड अराउंड द DFW मेट्रोपॉलिटन. सो अगर आप अरविंद में या फ्रिस्को में रहते हैं, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट. आई मीन, अगर आपको विजिट करनी हो तो सैटरडेज एंड संडेज भी अरविंद एंड फ्रिस्को लोकेशन ऑफ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ओपन. You're listening to Gup Shup Gali with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funny Share Radio.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
4: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: Now sir, or price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
13: Is saal to kamaal ho gaya, hamara revenue double ho gaya.
14: Sir acha hai, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: 53 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. And there is a Bollywood update. The trailer of Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan's Urta Teer is out today. And the setup is quite something. Ayushmann plays a Pakistani spy suffering from memory loss. Or us film mein, with the film positioning itself as a spy comedy. Abhi horror comedy suna tha. Abhi spy comedy bhi aa gaya hai, rather than another straight action Spanish movie. And honestly, mujhe concept bahut hi pasand aaya, bahut hansi mein trailer dekh ke. Agar nahi dekhi hai, dekh lo yaar. Spy hai, but spy ko khud yaad nahi hai ki wo spy hai. Ek to ek dialogue bhi hai actually trailer mein ki usko deshbhakti yaad hai, but kaun se desh ke liye ye yaad nahi hai. I mean, seriously, आप अगर नहीं देखे हो अभी भी तो go and watch the trailer of उड़ता तीर. वैसे Bollywood spy universe में usually hero को सब पता होता है, you know, mission पता है, enemy पता है, country भी पता है. यहाँ hero probably उठ के सुबह वही dialogue बोलता है 1970s वाले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ. But this made me think कि Bollywood में कुछ genre इतने serious हो गए कि maybe we have lost the flair of कॉमेडी. वो कॉमेडी का डोज जो था अर्ली 2000s में, जो अक्षय कुमार वापस लेके आए थे आफ्टर हिज हेरा फेरी टाइम. एंड वी सीरियसली मिस दोज बॉलीवुड मसाला मूवी और द स्लैपस्टिक्स कॉमेडीज जो आज भी हम किसी कन्वर्सेशन में फनीली रेफर करते हैं. लाइक ऑल द मीम्स दैट आर नाउ एट प्रेजेंट वेरी प्रेवलेंट इन द इंटरनेट आर बेस्ड फ्रॉम दोज बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज एक्चुअली, है कि नहीं. चाहे कॉमेडी की बात हो रही है तो 90s का ये गाना या 90s की ये फीलिंग कैसे मिस हो सकती है. लेट्स वॉच और लेट्स लिसन टू योर फेवरेट स्टेशन 104.9 FM फन एशिया रेडियो.
1: अरे वाह,

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiser Way location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: हेलो, Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियरबाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
12: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
13: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
12: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
14: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
12: The One, Force of the Forest.
15: A Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
12: On 25th September in cinemas near you.

एंट्री ले ली है इंटरनेट की गॉसिप ने ऑन गपशप गली विद मी रुमिता ओनली ऑन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, यानी कि बॉलीवुड को जरा सा साइड में रखते हैं और अभी इंटरनेट की तरफ चलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप एट ऑल। नवरात्रि इज अप्रोचिंग एंड सोशल मीडिया में एड्स मैंने देखा एंड इट इज क्वाइट सर्क्यूलेटिंग। देर आर offers also on this advertisement that I saw, which is rent a garba partner. Yes, you heard that right. Apparently, finding someone who can match your steps has now become a potential service category. मतलब वाह, क्या business idea है? Some viral posts which are advertised with different packages and prices are also circulating. यानी कि सिर्फ garba हाथ पकड़ के फोटो खींचना, गरबा का ड्यूरेशन, इन सब में कैटेगरी में बटे हुए हैं। एंड साइबर क्राइम अथॉरिटीज हैव वॉर्न्ड पीपल नॉट टू सेंड मनी टू अननोन एंड अनवेरीफाइड प्रोफाइल्स इन एड्स को सर्कुलेट होने के बाद, जो देखा है साइबर क्राइम वालों ने। बट अभी सेफ्टी वार्निंग इज डेफिनेटली सीरियस, बट द कॉन्सेप्ट, I have seriously one question. I mean, dating apps के बाद क्या अब festival apps का जमाना आ गया है? Because garba partner rent पे मिल रहे हैं यार। अभी next क्या होगा? शादी में that relative who dances enthusiastically, वो हम ढूंढने वाले हैं इन apps में? यार उसके subscriptions भी होंगे? यार मैं तो बहुत confused हूँ और इन internet trends के लिए तो दिमाग, मतलब झोल हो गई दिमाग की। आप सहमत हो? नहीं? चलो थोड़ा dance कर लो wedding वाले। This is Gup Shup Gully with me, Rumita.

काफी क्रेजी होने वाला है ऑन द 26th ऑफ सितंबर एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन एलन, बिकॉज द वन एंड ओनली सोनू निगम विल बी लाइव इन कॉन्सर्ट विथ हिज कॉन्सर्ट द रेवोल्यूशन, वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन एंड हैव दिस अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. आपके फेवरेट गाने, आपके बचपन के, एंड इवन आई मीन टुडे हिज सॉन्ग्स आर स्टिल लेजेंडरी इन दैट iconic voice. Sonu Nigam will be live here in Allen. Agar abhi bhi aapne tickets nahi kharidi hai, tickets are still available at the Ticketmaster, and if you need more information, call 855-360-SHOWS. That is 855-360-SHOWS. Revolution, where Sonu Nigam will be live. Aur sabse important cheez ye hai ki is event ke exclusive media partner hai Funisha Network. You're listening to Gup Shup Gully with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funisha Radio.

38 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. And if आप मेरे साथ बने हुए हो, जुड़े हुए हो, तो एक रीकैप दे दूं कि थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस रीसेंट बिजनेस कैटेगरी विच इज रेंट योर गरबा पार्टनर. और इस गरबा पार्टनर वाली स्टोरी से मुझे एक और थॉट आया है कि फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर. फेस्टिवल्स पहले भी सेलिब्रेटेड होते थे, आज तो होते हैं, बट समटाइम्स डेफिनेटली आजकल फेस्टिवल्स ऑल्सो हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड. अब रिसेंटली गणेश चतुर्थी को ही देख लो, आउटफिट, पिक्चर्स, रील, ट्रांजिशन वीडियो, ग्रुप बूमरंग, खाने वाला पिक्चर, परफेक्ट रील आपका बन तो गया. एंड बाय द टाइम आपका कॉन्टेंट बन गया, आपका फेस्टिवल ना जाने कहाँ से चला गया. एंड आई एम नॉट एंटी फोटो एट ऑल. हा, फोटोज आर मेमरीज, रील्स आर फन, बट कभी कभी ना हम एक स्ट्रेंज अलग सी प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे अराउंड के एवरीवन एल्स लुक्स लाइक दे आर हैविंग द बेस्ट यू नो पूजा एवर, बेस्ट नवरात्रि एवर, बेस्ट दिवाली एवर, एंड यू आर सिटिंग एट होम ईटिंग खिचड़ी और आप अपने बोरिंग लाइफ के बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हो. बट रिमेंबर, आप अपने ऑर्डिनरी से वेंसडे को कंपेयर कर रहे हो समबडी एल्सेस एडिटेड 14 सेकेंड्स. यार ये ठीक नहीं है. एट इवेंट्स यू डू क्लिक 100 पिक्चर्स कंटेंट बनाने के लिए, इधर उधर वीडियोस तो ले ही लेते हो, बट क्या आप वो इंसान भी हो जो सिर्फ फेस्टिवल्स में द फेस्टिवल दैट यू आर अटेंडिंग आर गोइंग टू सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए उस फेस्टिवल में हो? डाउटफुल हूँ मैं कितने प्रतिशत लोग आजकल वो करते हैं, बट फिर भी इफ यू आर दैट 1%, कॉल करो. स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555 एंड लेट द गपशप कंटिन्यू.

That was Shilpa Shetty from the movie Dostana. Yaar, kuch bhi kar lo yaar, inki umar ek din bhi nahi badhti hai. Kya khati hai Shilpa Shetty? You're listening to 104.9 FM, Funisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rimita. Khair, Shilpa Shetty ke, you know, the way, how gorgeous she is and how stunning she is, us ऑरा को तो हम मैच नहीं कर पाएंगे. हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी अपग्रेड कर सकते हैं. लाइक वी कैन एक्सेसराइज आर सेल्व्स विथ ज्वेलरीज. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ज्वेलरी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अबाउट श्री कृष्ण ज्वेलर्स, जो कि लोकेटेड है ऑन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, वेयर यू कैन एक्सप्लोर अ स्टनिंग हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड्स. और मुझे नहीं लगता इस पूरे DFW मेट्रोपॉलिटन में उन जैसे पोलकी के जो कलेक्शंस हैं उनके, एंड देर आर एब्सोल्युटली मेनी मोर कलेक्शंस दे हैव, वैसे डिजाइंस आपको कहीं और मिलेंगे. सो विथ डिजाइंस फॉर एवरी ओकेशन एंड फॉर एवरी स्टाइल, चाहे आपको हैवी ज्वेलर्स पसंद, ज्वेलरी पसंद हो, या फिर ज्वेलरीज विच आर समवॉट फॉर एवरी डे, you can definitely try out Shri Krishna Jewelers again, which is located on the main street in Frisco.

You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. And you know, एक NRI problem है जो मुझे लगता है अमेरिका में रहने वाले almost हर देसी ने कभी ना कभी फेस की होगी. हमारी सैलरी हमेशा हमारे देश के करेंसी में कन्वर्टेड होती है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस कभी नहीं. आप इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किसी भी देश में हो, किसी रिलेटिव को कैजुअली अगर बता दो ना कि आपकी सैलरी कितनी है, बस मेंटली उनका कैलकुलेटर इज ऑन और उस मोमेंट पे उनकी आंखों में आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है. ये तो अमेरिका में बहुत पैसा कमा रहा है. बट एक वायरल वीडियो ने एग्जैक्टली इसी कन्वर्सेशन को इंटरनेट पर डाल दिया है. फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े के साथ कन्वर्सेशन में थे कॉन्टेंट क्रिएटर खुशी जैन, जिन्होंने मैनहट्टन में NYC मैनहट्टन में लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हुए बताया कि एक टू बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट $10,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, विच इज रफली 9 to 10 lakhs इंडियन रुपीज एवरी मंथ. अब सैलरी को रुपीज में कन्वर्ट करने वाले रिलेटिव्स को प्लीज ये वाला कन्वर्शन भी दिखा दो, बिकॉज अब्रॉड की सैलरी आपके किसी भी देश से बड़ी लगती जरूर है, बट रेंट, मॉर्गेज, इंश्योरेंस, चाइल्ड केयर, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर, वो भी तो डॉलर्स में ही जाते हैं ना. तो DFW, क्या आपके साथ भी हुआ है कि आपके देश में किसी को अपनी US वाली सैलरी बताई और उनका रिएक्शन देख के इनको लग रहा है कि मैं तो सीक्रेटली अंबानी ही हूँ यार.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
7: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
15: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहां तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
17: दीवारा तेरा।
18: वही आवाज
17: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

bass is heavy.

दिल का तो पता नहीं, पर मेरे स्टूडियो का टेलीफोन अभी धराधर बजने वाला है, बिकॉज इट इज दैट टाइम ऑफ माय शो जहां पे हमारे बॉलीवुड बफ DFW के लिसनर्स जग उठते हैं. इट्स 12:08 PM बाय द स्टूडियो क्लॉक. यू आर लिसनिंग टू गप शप गली विद मी रमिता. एंड यस, राइटफुली सेड, इट इज दैट गिव अवे टाइम जहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी प्लॉट. और सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं, बैडली आई एम गोना एक्सप्लेन दैट मूवी प्लॉट. और आपको गेस करना है मूवी का नाम, जिससे आप जीत सकते हैं $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम Fun Pizza Kitchen. So without any further ado, let me give you the clue ताकि आप जल्दी से स्टूडियो का नंबर which is 972-235-5555 डायल कर सको और मुझे सही जवाब दे सको. So ready? Okay. An Indian girl and a Pakistani guy fall in love and break up. एक एलियन आता है और उन्हें कपल थेरेपी देता है और उसके बदले में he gets paid in batteries. An Indian girl and a Pakistani guy break up. Alien aata hai, couple therapy deta hai and gets paid in batteries. Phone lines have started blinking in. Call karo. Dekhte hai, kaun hai pehla sahi jawab dene wala listener. Keep listening to this beautiful track from the movie Gangubai Kathiawadi.

गाने में चार कदम तो बहुत ज्यादा ही रोमांटिक लगता है, लेकिन DFW में लंच के टाइम चार कदम नहीं, चार ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस करने में ही पेशेंस आपका टेस्ट हो जाता है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रिमिता, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर प्रोबेबली हेयरिंग आउट राइट नाउ, यू नो, लंच पिकअप, क्विक मीटिंग, या बस ऑफिस से थोड़ा सा एस्केप, चलो भाई थोड़ा ड्राइव पर होके आती हूँ। सो प्लीज ड्राइव सेफ, फोन साइड में रखिए एंड कीप योर अटेंशन ऑन द रोड। एंड दिस ज्ञान इज डेफिनेटली मेरा है, मुफ्त का ज्ञान, बट ऑब्वियसली इफ यू ड्राइव सेफ, और मानो अगर कहीं ऊपर नीच इधर उधर हो भी गया, इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट हो गया आपका, खुदा ना करे, या फिर अब कभी आप गिर गए, यू नो, यू हैव अ स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, सो यू फोकस ऑन हीलिंग रादर देन, यू नो, इंश्योरेंस कंपनीज, 911 कॉल करना, ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, बट I'm talking about your insurance, car insurance, your health insurance, your everything that focus on your accident at that moment. Law offices of Omar Khwaja will be by your side and attorney Omar Khwaja will fight your case and make sure ke aapko apna compensation rightfully mile. And the best part about him is that you don't need to pay anything unless he wins the case for you. Toh, ये हुई ना win-win situation for a consultation and or a discussion. If you ever get in a traffic accident or anything, call करे 469-300-5046, that's 469-300-5046, or you can simply visit attorneyomar.com, that is law offices of Omar Khwaja, attorney Omar Khwaja for you.

और इसी के साथ वेंसडे की फ्रेश ट्रेंडिंग एंड टुडे गपशप को करते हैं रैप. यू नो वी हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, अ लॉट ऑफ गपशप टुडे ऑन दिस मिड वीक वेंसडे में. दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ. कल थर्सडे है तो मूड जरा सा चेंज होगा. I'll be talk about throwback and memories. But कल सिर्फ generic nostalgia नहीं करेंगे. Let's dig into those very specific memories जो सुनते ही आप कहोगे oh my god ये याद है. And till then DFW scroll करिए, trend करिए, enjoy करिए. बस गरबा partner rent करने से पहले profile जरा सा verify कर लेना. See you tomorrow on Gupshup Gali only on 104.9 FM Funisha Radio.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: बेटा 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
17: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

0: नेशन का फन स्टेशन फन एशिया रेडियो।
1: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। फन एशिया 104.9 एफएम पे आपकी होस्ट आयुषी आ चुकी है आपको एंटरटेन करने। दो घंटे के सफर में हम आपको लेके चलेंगे कुछ खूबसूरत बॉलीवुड गानों की तरफ, कुछ आपकी फरमाइश, कुछ मेरी पसंद और उसके साथ ढेरों बातें। तो आज का अपना शो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, जो है अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में।

taking you towards some of the most romantic songs in our midweek Wednesday धमाल. और आज हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गाने, romantic numbers इस segment में हमारे show के. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि आपने आपके सपनों का घर ना आपके बहुत ही करीब है, उतना करीब जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन फॉर बाइंग और रीफिनेंसिंग. कॉल 9722455626. आई रिपीट, दैट्स 9722455626 or visit dreamhomemortgage.com. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. Studio ka number bata rahi hu, 9722355555 hai. Call kariye, apne pasand ke gaano ki farmaish dijiye. Par filhal hum na sirf aur sirf kuch romantic numbers lekar ke aa rahe hain 2000 ke daur se. Bahut hi pyari aur khoobsurat filmein hain jinke ye gaane hain.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
6: इस वन की काली शक्तियाँ और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
7: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
8: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
7: The One, Force of the Forest.
9: A Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
10: On 25th September in cinemas near you.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं हीरो.
18: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
19: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
18: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
19: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
20: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
21: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
20: Barista House, richness of biryani bliss.
22: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
20: कितनी लंबी लिस्ट है?
22: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
20: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
23: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
24: रेस्टोरेंट चूज करना हो? गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो? गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
25: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
26: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
27: वही आवाज
11: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
1: तुमसे मिलके दिल का है.
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
2: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. और अभी हम कुछ सुन रहे थे बहुत ही प्यारे खूबसूरत रोमांटिक नंबर्स, लेकिन इसमें लग गया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि एक और फरमाइश आ गई है भाई. रोमांटिक गानों के बीच में एक बर्थडे विश की फरमाइश आ गई है. और जब बात हो भाई और बहन की तो बीच में सब कुछ रोकना पड़ता है. अगले गाने की फरमाइश आई है मरियम की तरफ से अपने छोटे भाई यूसुफ जिब्रान को, और आज उनका बर्थडे है इसलिए ये गाना उनके लिए. इसके बाद फिर से रोमांटिक और प्यारे खूबसूरत बॉलीवुड गानों का सफर शुरू करेंगे. फिलहाल दिस इज फॉर यू जिब्रान, विशिंग यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.

Okay, so here was this song requested by Maryam. और अगले गाने की तरफ चलते हैं. ये रहा एक और प्यारा और खूबसूरत सा नंबर. वापस से अपने रोमांटिक गानों का सिलसिला करते हैं इस मिड वीक धमाल में.

This part of our show is proudly brought to you by AD Fintechs, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. और ये था एक और प्यारा और खूबसूरत सा रोमांटिक नंबर. ऐसे ही कुछ रोमांटिक गाने लेकर के आ रही है आपकी होस्ट आयुषी. ये गाने जो है ना, ये जो रोमांस है, ये बॉलीवुड ने हमें सिखाया है, मतलब करना नहीं सिखाया, इस रोमांस को देख देख कर जीना सिखाया है. और हमारे मन में ऐसी उम्मीदें पैदा करी है ना कि बस ऐसा ही कोई रोमांटिक सा हीरो हमारे जीवन में आएगा और हमारी भी दुनिया ऐसी ही हसीन हो जाएगी. बट व्हेन रियलिटी हिट्स, आपको समझ में आता है कि सारा रोमांस धरा का धरा रह जाता है और ज़िंदगी के जद्दोजहद में सारा का प्यार जो है ना, वैसे घुल करके पानी के साथ आटे में जाके उसकी लोई बना के चपाती बनानी पड़ जाती है और रोज़ रोटियां बेल रहे होते हैं हम शादी के बाद. पता नहीं क्या बोला मैंने, पर जो बोला अगर आपको समझ में आया तो समझ लीजिए शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और बाकी रोमांटिक एक्टर्स ने जो प्यार का लेवल हमें दिखाया ना बॉलीवुड में, वो झटाक से ऐसे नीचे उतर जाता है लाइफ में. बट प्यारे जो खूबसूरत गाने हैं, ये थोड़ी देर के लिए हमें फिर से उसी मोड में ले जाते हैं जहाँ पे हम खो जाते हैं इनकी आवाज़ में. इनकी ये जो गाने हैं, इनको देख करके फिर से हो जाते हैं दीवाने. ऐसा ही एक और प्यारा सा नंबर ऋतिक रोशन और ईशा देओल की फिल्म से है.

So here was this beautiful track from the movie Na Tum Jaano Na Hum. Ritik Roshan aur Isha Deol the is gaane mein. तो हम बात कर रहे थे रोमांटिक नंबर्स की कि किस तरह से ना रोमांस ने, मतलब बॉलीवुड के रोमांस ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और उस स्टैंडर्ड को सिर्फ और सिर्फ ये फिल्में और गाने ही पूरे कर सकते हैं. आई डोंट थिंक कि रियल लाइफ में वो स्टैंडर्ड्स मीट हो सकते हैं. अब शायद मेरे कुछ रेगुलर कॉलर्स हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं हो सकते हैं. तो अगर आप कुछ ऐसे हो तो बताओ कैसे कर सकते हो ये स्टैंडर्ड सेट और कैसे किया हुआ है इसको सेट. एक्चुअली आप स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9722355555 पे और बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है रियल लाइफ में या बॉलीवुड में जो ये शाहरुख खान के लेवल का प्यार है वो वहीं तक रह जाता है. अगर आप ऐसा कुछ नहीं बताना चाहते मुझे तो मत बताइए, कॉल करिए और अपने पसंद के गाने प्ले करा लीजिए. क्योंकि भाई बॉलीवुड में तो एक से एक प्यारे, खूबसूरत और रोमांटिक नंबर्स भर भर के हैं. तो देखते हैं अगला रोमांटिक नंबर कौन लेकर के आता है मेरे पास स्टूडियो में. फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि फॉर 13 इयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स and Himalayan MedSpa services all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. Is this beautiful 90s ka number in the voice of Udit Narayan and Alka Yagnik. Agli farmaish main umeed karti hu aapki taraf se hogi. Call kariye studio ke number pe 972-235-5555.

0: It was this beautiful track. और अब वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और देखिए जो रोमांटिक गानों का जो सिलसिला है ना यहाँ पर, ये अपने परचम पे है. मतलब इट्स ऑन अ नेक्स्ट लेवल राइट नाउ. अब एकदम अपने हाईएस्ट पे है, क्योंकि सब लोग ना ढूंढ ढूंढ के बहुत ही प्यारे प्यारे रोमांटिक नंबर्स लेकर के आ रहे हैं. और रोमांस और बॉलीवुड का जो नाता है ना, ये बहुत ही पुराना है. मतलब सारे प्यार के स्टैंडर्ड सेट्स वहीं से किए गए हैं. कुछ रियल लाइफ से लिए गए होंगे छोटे मोटे इंस्टेंसेस, बट चाहे वो गुलाब देना हो या घुटनों पर बैठ करके अंगूठी पहनाना या फिर प्रपोज करने के आइडियाज़ देने, आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ये सारे आइडियाज़ बॉलीवुड लेकर के आया है. तो कैसे बॉलीवुड गानों से पीछे रह सकते हैं हम? और बॉलीवुड का जो रोमांटिक नंबर है वो आज इस वीकेंड मिड वीक धमाल में मैं लेके आई हूँ, आपकी होस्ट आयुषी. तो बने रहिए और सुनते रहिए फनेशिया 104.9 FM, क्योंकि बहुत सारे प्यारे गाने लाइन अप है सिर्फ और सिर्फ आपकी ही फरमाइश पर.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
6: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: Astrology readings are for guidance only and results may vary.
8: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
13: फिकर नॉट, वी हैव द
12: perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
14: The Dill of Dallas, Heart to Heart, Fun Asia.
0: आ गए वापस आप, हम भी आ गए वापस इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. आपकी होस्ट आयुषी, आप सुन रहे हैं फनेशा 104.9 FM. और भाई चल रहा है मिड वीक धमाल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बज रहे हैं कुछ रोमांटिक गाने. और इस बार ये गाने मेरे पसंद के नहीं हैं, बिकॉज अभी पिछले 3-4 गाने कुछ ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पे थे. और आने वाले जो गाने हैं ये भी आपकी ही फरमाइश है. दिस इज योर रिक्वेस्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय टुडे सेगमेंट, जिसमें यू नो जॉइनिंग इन द सेंस ऑफ जॉइन तो आप हो ही, मतलब आप अपने जो गाने दे रहे हो ना वो एकदम परफेक्ट हैं मेरे सेगमेंट के साथ. इतने प्यारे और खूबसूरत रोमांटिक नंबर्स लेके आ रहे हो. कुछ गाने जो हम भूल जाते हैं ना वो हमारे लिसनर्स हमें याद दिला देते हैं. तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे 9722355555. बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज यू आर जॉइनिंग दिस होल सेगमेंट का, यू इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ this segment every time by giving me such beautiful songs. And another such beautiful song is from the movie Raju Chacha. Film ka naam hai Raju Chacha par gana hai bahut pyara.
15: Mere labon pe ikrar hai, haan yahi to hai sab nishaniyan, haan isi ka naam.

This beautiful track in the voice of Shan was requested by Divya. Thank you, Divya. Raju Chacha hai film ka naam aur is gaane mein hai Ajay Devgan aur Kajol. और ये एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत रोमांटिक नंबर था दिव्या की तरफ से. अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि अगर आप H1 पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम, दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, including EB-5 investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, you can email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नंबर की तरफ चलते हैं और इस गाने की फरमाइश है सोहेल की तरफ से मरियम के लिए. और जब भी सोहेल मरियम का नाम मन में लेते हैं तो बस यही गाना उनको याद आता है.

Here was this beautiful track from the movie हम आपके हैं कौन, और अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे चल रहा है मिड वीक वेंसडे रोमांटिक धमाल। सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक नंबर्स चल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के हम भी ला रहे हैं आप भी ला रहे हैं, और हम दोनों जब साथ मिल जाएं तो क्या ही कहना है भाई, फिर तो कमाल हो ही जाएगा। अगला गाना आपको सुनाते हैं और सोच रहे हैं क्यों ना आपको बता दें कि अब अभी आप एक गिव अवे जीतने वाले हो। अगर आप स्टूडियो में मुझे कॉल करते हो और फिल्म का नाम बताते हो तो हम आपको देंगे $10 का डिस्काउंट कूपन ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। और ये है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, भैया इनके यहाँ बड़ी स्पेशल थाली होती है मंडे टू फ्राइडे, एंड इनके पास हर बार एक एक्साइटिंग नई डिश होती है जो हमेशा रोटेट होते रहती है, एंड ये लंच ओनली ऑप्शन है। तो भैया लंच का टाइम भी हो रहा है, अगर आप ऑफ मैकडर्मट ड्राइव एलन में हैं तो डेफिनेटली जाइए चंडीगढ़ बाइट और मुझे कॉल करके जाइएगा तो $10 का ऑफ भी पाएगा। सो हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, मूवी का नाम मैं नहीं बता रही इस बार, आपको बताना है कौन सी है ये फिल्म, ताकि आपको मैं दे सकूं ये $10 ऑफ का गिव अवे एक्सक्लूसिवली फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स।

प्यार तो होना ही था, यही है फिल्म का नाम। और जवाब मिल गया था मुझे बहुत ही जल्दी। जोरदार तालियां हो जाए ग्रीष्मा पटेल के लिए। हाँ बिल्कुल, तालियां तो बनती हैं भाई फटाफट जवाब देने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों को गिव अवे आज नहीं मिल पाया है भैया, अफसोस मत जताइए, कल मिलेगा। हम हर दिन आते हैं 12:30 से 2:30 बजे तक आपको एंटरटेन करने। और आज हमारे विनर को मिल रहा है $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। सो गो एंजॉय योर फूड, इट्स लोकेटेड इन मैकडरमट ड्राइव इन एलन, एंड यू कैन विजिट देम ऑन chandigarhbites.com एज वेल फॉर मोर डिटेल्स। अगले गाने की तरफ चलते हैं भैया, बहुत सारे प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश आ गई है। एंड दीज आर दोज ट्रैक्स जो हम लोग जनरली नहीं सुनते हैं, बिकॉज जब भी रेडियो ऑन करो या फिर इंस्टाग्राम ऑन करो या फिर टीवी ऑन करो, तो वही सारे गाने जो हर जगह ट्रेंडिंग है वही चलते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्यारे और खूबसूरत गाने हैं जो हमारे जहन से निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं आते हैं। एंड दीज आर दोज ब्यूटिफुल ट्रैक्स जो बहुत समय बाद हम सुन रहे हैं। सो अनदर ब्यूटिफुल नंबर, और ये भी एक फरमाइश आई थी हमारे कॉलर की तरफ से, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गाना है, उसकी तरफ लेके चल रहे हैं आपको।

0: हम दिल दे चुके सनम का ये गाना और समीर ठंडी हवा का झोंका सुखान दिला के जाएगा। ये वाला डायलॉग याद है इस फिल्म से। मैं अभी ये पूरा गाना ना मतलब बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड मतलब 90% नहीं 95% बिल्कुल सही गाया है मैंने ये गाना उस समय ना कैसेट के साथ। मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को, जो उस दौर के लोग हैं उनको पता होगा, कैसेट्स कैसेट्स के साथ आता था पूरा का पूरा, एक बड़ा सा ना ऑलमोस्ट एक पोथी पत्रा जैसा लंबा सा, जिसमें सारे गाने हर एक शब्द बोल बाय बोल लिखे होते थे और वो सारे हमने ना रट लिए थे। भले हमें अपने सिलेबस की पढ़ाई लिखाई याद होना हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स पता होना हो, पर हम दिल दे चुके सनम का गाना रटा हुआ था यार। ये था बॉलीवुड का असर हमारी ज़िंदगी पे। सोचो सारे गाने रट लिए थे, ऐसे लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही फिल्मों की तरह चले, बस कोई आए प्यार हो जाए और उसके बाद से उसके लिए दुनिया जहान से लड़ जाए, बिल्कुल तलवार वलवार निकाल के तैयार हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं यार, ऐसा हो ना पाया। बस ये फिल्मों में ही फिल्मों वाला प्यार दिखा और वहीं पे दिख करके खत्म भी हो गया। एनीवेज आज फन एशिया 104.9 FM पे आपकी होस्ट आयुषी आपको सुना रही है कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत बॉलीवुड के रोमांटिक नंबर्स। मिड वीक रोमांटिक धमाल बोल रही हूँ मैं इसको, और बस ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों का सफर यहाँ चलता रहेगा। बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव मेरे कॉलर्स हैं, वो सारे प्यारे प्यारे गाने ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। ऑल दोज ब्यूटिफुल लव स्टोरीज एंड रोमांटिक नंबर्स जिसके आस पास हमारी जवानी के दिन बीते हैं और हमने भी सपने बुने हैं ऐसे ही कुछ गाने सुनकर। कमिंग अप नेक्स्ट वुड बी दिस सॉन्ग फ्रॉम कुछ कुछ होता है द टाइटल ट्रैक। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं वापस आते हैं। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। कॉल करिए और अपने पसंद के गाने प्ले कराइए अपनी होस्ट आयुषी से। तब तक के लिए ब्रेक पे जाइए फटाफट।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन। ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
5: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
0: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
6: डील कहाँ?
0: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
6: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स, सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
12: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर, फन एशिया।
0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
14: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
15: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
10: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
9: आपके सुहाने सफर का साथी वनीशा रेडियो।
0: फिर से आपका स्वागत है, आपकी होस्ट आयुषी आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी से आपको ब्रेक पे भेजा था, जल्दी से बुला भी लिया मैंने और बस फिर से वही प्यारे खूबसूरत जो रोमांटिक नंबर्स हैं वो आपके लिए लेके आए हैं, ढूंढ ढूंढ के एक एक चुनिंदा प्यारे खूबसूरत गाने। और अगला गाना आ रहा है फिल्म कुछ कुछ होता से है, जिसमें एक डायलॉग था शाहरुख का, एक लड़के का सर सिर्फ 3 लोगों के सामने झुकता है, देवी माँ के सामने, माँ के सामने और कौन था वो तीसरा, अभी तक शाहरुख ने नहीं बताया।

मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। याद है वो डायलॉग, कुछ कुछ होता है का, जब काजोल का दिल टूटा, मतलब दिल टूटा नहीं, टूट ही गया था, पता लगा कि शाहरुख किसी और से प्यार करते हैं, तो सबसे पहला डायलॉग यही निकला था उनके मुंह से। ये गाने, ये फिल्में, इनके डायलॉग्स इस तरह से हमारे जहन में बैठे हुए हैं ना कि भूले नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली 90s की मूवी देखी नहीं है, हमने इनको जिया है, लिटरली जिया है। और अभी मेरी कॉलेज से मेरी बात हो रही थी, जहाँ पर मुझे बता रही थी कि किस तरह से हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि इसी तरह से कुछ होगा हमारे भी लाइफ में। ऐसे ही प्यार का अगर कोई लेवल और स्टैंडर्ड है तो शाहरुख खान वाली मूवीज़ का है। मतलब जो रोमांटिक गाने, रोमांटिक फिल्में, जो रोमांस का लेवल है वो वहीं से आया है। बट यार जब वो रियलिटी हिट करती है तो क्या बोलते हैं, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। मेरा बकवास गाना मत सुनिए, अगले गाने की तरफ लेकर के चलती हूँ आपको, और जल्दी से आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा नंबर। लेकिन उसके पहले यार आपको बता दें पीएमजे ज्वेल्स के बारे में कि इनका नया लोकेशन है फ्रिस्को में। दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। एक्सप्लोर ब्यूटिफुल गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन। विजिट पीएमजे ज्वेल्स ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को। ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। भाई कितनी भी बातें कर लें हम इन लव स्टोरीज के बारे में, इन मतलब 90s के प्यारे खूबसूरत गानों के बारे में, आज भी खो जाते हैं इन गानों में। मतलब प्यार हो तो ऐसे ही हो, बिल्कुल टूट के, नहीं तो नहीं हो वाला फीलिंग है।

A beautiful track that was requested by Hinal. ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत गाने लेकर के आई आपके होस्ट आयुषी, और कभी कभी आपका दिल जोड़ रही है, कभी कभी तोड़ रही है, क्योंकि मतलब हम जब बोलने लगते हैं तो कुछ भी बोलने लगते हैं, और बोलते हैं तभी तो आपको पसंद आता है, और पसंद आता है तभी तो आप फोन करते हो. ऐसे ही फोन करते रहो, अपना प्यार देते रहो, और फनीश अभी मेरी आवाज़ सुनते रहो. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, 15 मिनट हैं फिलहाल. एक दो गाने लाइनअप करके रखे हुए हैं मैंने, पर अगर कोई मज़ेदार से ना प्यारे से रोमांटिक नंबर की फरमाइश आ गई तो हम चूज करेंगे हमको कौन सा प्ले करना है. इसलिए आप अभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद के गाने बजा सकते हैं. और अगर आपको पसंद आ रहा है ना ऑलरेडी जो मैं प्ले कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, तो यार खुश हो जाइए और खुश होकर के मुझे और खुश कर दीजिए कॉल करके, बिकॉज आपके कॉल्स ही हैं जो हमें स्टूडियो में अच्छा बोलने पर और अच्छा करने पर मजबूर करते हैं, ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं वो खुश रहें. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बता दें यार कि एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक होने वाला है डैलस में. कहाँ हो आप लोग, क्या कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, जल्दी से ले लो टिकट, क्योंकि द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है 27 सितंबर को एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, your favorite songs, the iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam Live exclusive media partner hai Fan Asia Network, aapka apna Fan Asia. To chaliye agle gaane ki taraf lekar ke chal rahe hain. Bahut hi pyara aur khoobsurat sa number, Shahrukh Khan Twinkle Khanna hai is gaane mein.

What a beautiful track from the movie Badshah. जल्दी से अगले गाने की तरफ चलते हैं अपने midweek romantic धमाल में. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना है फिल्म कृष्णा कॉटेज से.

What a beautiful number in the voice of Shreya Ghoshal. Krishna Cottage ka ye gaana bahut arse baad suna hai aur bahut bahut thank you Mahi, aapne ye gaana request kiya uske liye thank you so much. Aur filhal mere vida lene ka waqt ho chuka hai. Ji haan, 2:30 bajne wale hain aur ab yahan pe afternoon drive time mein hongi hamari pyari sunehri Kiran, jo ki bahut hi pyara sa show leke aati hain aap logon ke liye. To meri chatpat aur bhag bhag ke baad sunehre sunehre आवाज को और सुनहरे सुनहरे गानों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए हमारी प्यारी सुनहरी किरण के साथ. तो आज के लिए विदा ले रही हूँ. लास्ट गाना प्ले करके जा रही हूँ. जिनके गाने नहीं प्ले कर पाई हूँ माफी दीजिएगा. फिर अगले बार आएंगे तो आपके लिए आपके पसंद के गाने प्ले कर देंगे. मतलब कल दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक आपके होस्ट हो गया वनीशा के स्टूडियो में. मेरा नाम है आयुषी, याद रखिएगा. और कॉल करते रहिएगा स्टूडियो पे, जो कि है 9722355555 स्टूडियो का नंबर. आज के लिए टाटा बाय बाय. और श्रुति की फरमाइश पे ये प्यारा सा गाना सोनू निगम की आवाज में है, आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ. फिल्म का नाम है संघर्ष, अ ब्यूटिफुल रोमांटिक नंबर फ्रॉम दिस फिल्म. आज के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू टुमारो शार्प एट 12:30.

0: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
7: It's the time to clock out.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
14: तुमसे मिलके दिल का है.
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. Main hu Kiran aapke saath every Monday through Friday. 5:30 baje se 5 baje tak mera aur aapka saath rehta hai 9722355555 ke through rehte hain aap bhi mere saath. It is always the best part of my day when I am here with you. Music ka silsila to chalta hi hai, surila safar hum aapke saath jari rakhte hain, par uske saath bahut sari update, bahut sari information main aapke liye lekar aati hu, aur Sunehri Kiran mein milta hai aapko hamesha kuch different. Har roz ek naya pattern hota hai, ek nayi theme hoti hai hamari. Aaj hai जी वेंसडे, और वेंसडेज इज ऑलवेज जैम पैक्ड, और बहुत सारी मजे मजे की चीजें मैं आपके लिए लेके आती हूँ. वी स्टार्ट विद रोमांटिक मेलोडीज, गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसी, देन द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स इन पाकिस्तान, देन ट्रॉफी ट्रैक्स, और इसके दरमियान बहुत सारी इंफॉर्मेशन. स्टे ट्यून्ड, अभी तो पार्टी शुरू हुई है.

जी हाँ, लव डू हैव अ वे ऑफ फाइंडिंग अ वे. सुन रहे हैं आप रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद द सुनहरी किरण. और जी, अब वक्त आ चला है, मैं सीधा आपको एक गिव अवे की तरफ लेके जाने वाली हूँ. और ये गिव अवे ना सिर्फ ये कि आप इंजॉय करेंगे, ऑफकोर्स आपको पैसे बचने वाले हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज डक्ट क्लीनिंग. डक्ट टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है दिस गिव अवे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डक्ट क्लीनिंग हम सबके लिए कितनी जरूरी है. इट हेल्प्स रिमूव डस्ट फ्रॉम आर डक्ट्स. साथ ही साथ क्लॉग्ड वेंट साफ हो जाते हैं, एयर फ्लो इंप्रूव होता है, और जो आपके हिडन हैजर्ड फायर हैजर्ड्स होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं. इसी के साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं डक्ट क्लीनिंग के. आप जरूर इसको रीड कीजिए और देखिए कि हमें अपने घरों में डक्ट क्लीनिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है. और ये डक्ट क्लीनिंग आप करवा सकते हैं डक्ट टाइम से. डक्ट टाइम इज कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी एंड देव बिन डूइंग अमेजिंग. देव डन अमेजिंग जॉब्स, ब्रिलियंट रिव्यूज. आप भी डक टाइम के जीतू पटेल जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कोई भी आपका सवाल है, आपने बुकिंग करानी है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जीतू पटेल नंबर इज 972-877-2500. उनका नंबर. और आप अपनी बुकिंग कराइए और देखिए कि आपको क्लीनर, सेफर और फ्रेशर होम कैसे चुटकियों में देते हैं डक टाइम वाले. और अब ये गिव अवे आया है आपके लिए. यू कैन गेट अ 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. एक बार फिर आपको बताती चलूं, 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. आपके ड्रायर का जो वेंट है उसकी क्लीनिंग का 50% आपको डिस्काउंट मिल सकता है फ्रॉम डक टाइम. और आपको मुझे क्या बताना है, रोमांटिक मेलोडीज का समा चल रहा है जी, तो मुझे बताइए आपके जहन में वो कौन सा रोमांटिक गाना गुनगुना रहा है आपका जहन, जो आप कहते हैं कि बज जाए, प्ले हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन वैसे मेरे बैंक में इजाफा हो जाएगा म्यूजिक बैंक में. मुझे बताइए विच रोमांटिक मेलोडी इज वन ऑफ दोज जो इस वक्त आपके जहन में आ रही है. 972-235-5555 is the number to the studio.

इतनी सारी फोन कॉल्स हैं जी, अब हमारे कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए मजीद फोन कॉल्स मैं नहीं लूंगी. और आप सबको बताती चलूं कि जो बहुत प्यारे प्यारे गाने हमें रोमांटिक पता चले, जो मैं पूछ रही थी आपसे कि आपके जहन में क्या पहला गाना आ रहा है रोमांटिक मेलोडीज का सुन के, वी स्टार्टेड फ्रॉम पहला नशा, जो तुझे देखा तो ये जाना सनम, टू चांद सिफारिश एंड मैनी अदर्स, जैसे कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, और बहुत सारे और खूबसूरत गाने आपने बताए. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं, एज ऑलवेज मैथ के फॉर्मूले ने अपना नंबर दे दिया है, और वो लकी विनर हैं रोहन मेहता. रोहन कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ड्रायर डक्ट क्लीनिंग का ये 50% ऑफ फ्रॉम डक टाइम. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए, एंड समबडी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू फ्रॉम डक टाइम. थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज ऑलवेज इट इज अ प्लेजर, एंड दिल से शुक्रिया आप टाइम निकालते हैं, फोन उठाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. थैंक यू.

और इसी के साथ इस सेगमेंट का इख्तिताम कर रहे हैं इस गाने के साथ. दिस इज गोइंग आउट स्पेशली टू सफी. सफी आपके लिए लगाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको बताती चलूं जी, फाइनेंसिस का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर आप सोच रहे हैं यू नो यू वांट टू गेट सम पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज मेड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो फिर माई टाइम Equity, led by CPA Sudhir Pai. This is a place जहां आपको contact करना है. इनसे अपनी discussion कीजिए, देखिए आपकी क्या strategy, क्या requirements हैं आपकी, and what are the strategies that they suggest to you. That number is 469-702-1272. उनका number, या फिर आप उनकी website visit कर सकते हैं, which is mytimeequity.com. Once again, that website is mytimeequity.com.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
6: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
7: This one ki kali shakti. और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
6: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
8: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
6: The One, Force of the Forest,
9: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
6: On 25th September in cinemas near you.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: जीनी हुकम मेरे अका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
19: मिराज लाउंज चलिए मेरे अका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
18: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
19: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
18: और एंटरटेनमेंट,
19: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
18: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
19: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: वांट टू एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज इन इंडिया? यू डोंट नीड टू फ्लाई टू इंडिया। The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR.
20: Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hearth Regency, Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Guru Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

जी हाँ, मैं भी आपसे मिलने वैसे तो 2:30 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन 5 बजे तक रहूंगी, लेकिन अभी 3 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉप फ्रीक्वेंसी. कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक आपके लिए प्ले होगा 3:30 से 4 तक. आई विल ब्रिंग यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सो बने रहिए मेरे साथ, अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जबरदस्त म्यूजिक आपके लिए लाइंड अप है. एक गिव अवे सीधा आपके लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आज से 2 दिन पहले, आज है जी September 23rd, 21 सितंबर को एक ऐसी सिंगर का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट क्या पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से वो जानी और पहचानी गई. और वो कौन सी सिंगर हैं ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आपके लिए बरिस्ता हाउस की तरफ से एक $20 का गिफ्ट कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली. सबसे पहले आपको बरिस्ता हाउस के बारे में बताऊं जी कि दे आर वेरी पॉपुलर इन डेंटन और अब वो आपके लिए फ्रिस्को में भी आ चुके हैं. एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. आपको यहां

पहले आपको बरिस्ता हाउस के बारे में बताऊं जी कि दे आर वेरी पॉपुलर इन डेंटन और अब वो आपके लिए फ्रिस्को में भी आ चुके हैं. एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. आपको यहाँ पे बेहतरीन खाना तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ बेहतरीन चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, और डिजर्ट्स का तो पूछिए ही मत. बेहतरीन, हर चीज़ डिलिशियस. यू हैव टू लॉग आउट, चेक आउट बरिस्ता हाउस. दे आर लोकेटेड एट 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सस. और अब आपके पास मौका है ये $20 का गिफ्ट कार्ड जीतने का, डाइन इन ओनली. अगर आप मुझे बताइएगा कि 21 सितंबर को कौन सी ऐसी सिंगर का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया जिन्होंने अपना मतलब आप क्या उनका बारे में मैं आपको बताऊं, मैं बता दूंगी तो फिर और मजीद आसान हो जाएगा. पहले आप मुझे बताइए कि वो कौन है. गाना उन्हीं का मैं प्ले करने लगी हूँ. 6 decades पे उनका करियर स्पैन हुआ, यानी कि 60 साल से ज़्यादा वो करियर में अपने गाती रहीं. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. लेट्स प्ले दिस म्यूजिक, दिस सॉन्ग फॉर यू, एंड देन आप मुझे बताइए कि वो कौन है और जीत लीजिए ये मौका.

उनकी गायकी को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पल्लवी, प्रियंका, शोएब, आजम साहब, शिवानी एंड मेनी मोर। अभी भी फोन लाइंस बज हो रही हैं जी, गाना खत्म हो चुका है, कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म है। आपका नंबर जिस सीक्वेंस में आपने कॉल किया वो नंबर मैथ के फॉर्मूले में डाल दिया गया है और जो है आपकी लक ने आपकी विन का फैसला कर लिया है। और आज के हमारे लकी विनर हैं शोएब खान। शोएब साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे और हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए। दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को, वंस अगेन 6377 कस्टर रोड। और 2 दिन के बाद आपके पास अबाउट 7 दिन का दिन है टू गो टू बरिस्ता हाउस एंड अवेल योर $20 गिफ्ट कूपन फॉर डाइन इन ओनली। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट। मैडम नूर जहां को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 21st September 1926 इज द डेट ऑफ बर्थ, 23rd December 2000 एंड वेन वी लॉस्ट हर। शी वॉज अ प्लेबैक सिंगर, एक्ट्रेस थी, 6 decades पे उनका करियर स्पैन हुआ बोथ ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज पाकिस्तानी सिनेमा। और उनकी प्रोफिशंसी थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एज वेल एज द अदर जॉनर्स जैसे कि गजल गाती थी। और उन्होंने जी अपना जो डायरेक्टोरियल डेब्यू किया वो चनवे से किया 1951 में। वो बनी पहली फीमेल डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। शी इज रिकग्नाइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक इन साउथ एशिया, पर्टिकुलरली ऑफकोर्स पाकिस्तान, एंड शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मलिकाए तरन्नुम। वो हम उन्हें कहते हैं मलिकाए तरन्नुम का मतलब द क्वीन ऑफ मेलेडी, मलिकाए तरन्नुम नूरजहां। अच्छा, अब मैं आपके लिए जो गाना लगाने लगी हूँ आपने आजकल उसका वर्जन सुना है और वो वर्जन है जिसमें हमें नौरा फतेही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मैं आपको उसका बिल्कुल ओरिजिनल सुनाने वाली हूँ जो मैडम नूरजहां की आवाज़ में था। दिस इज़ ज़ालिमा, कोका कोला पिला दे।

जी हाँ, वन ऑफ दोज पॉपुलर सॉन्ग्स जिनको कई तरीके से गाया गया सानू नहर वाले पुल पे बुला के। और आपसे पूछा था कि ये जो गाना जिनकी आवाज में आपके लिए प्ले हुआ, ऑब्वियसली उन्हीं का बर्थडे हमने 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया। सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं जी, नूर जहां, मैडम नूर जहां का बर्थडे था 21 सितंबर को। इट इज ऑलवेज ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन सच अ ग्रैंड वे। उनके म्यूजिक को सेलिब्रेट किया जाता है।

जी हाँ, ये कोका कोला का ओरिजिन था जो अब आपको नौरा फतेही जिसमें परफॉर्म करती हुई नजर आती है. दिस इज द वेरी ओरिजिनल जालिमा, कोका कोला पिला दे. वैसे जिस जमाने में ये गाना आया था, मैं सोचती हूँ वैसे बड़ी थॉट डाली होगी जालिमा कोका कोला पिला दे, या फिर कोका कोला वालों ने इनको बहुत ही ज्यादा पैसे दिए होंगे अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए. ये वैसे मुझे बात ज्यादा सही लग रही है. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. हमने सेलिब्रेट किया नूरजहां मैम को. टाइम हमारे पास इतना कम होता है, गाने तो उनके इतने हैं कि पूरा एक दिन भी उनके सारी प्लेलिस्ट बजाई जाए तो भी इनफ नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा. बट वी हैव टू मूव ऑन, सो वी आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग हर. और दो गाने मैंने आपके लिए उनके प्ले किए. आपको ये बता दी चलूँ कि शी रिकॉर्डेड अबाउट 10,000 सॉन्ग्स इन वेरियस लैंग्वेजेस, जिसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, और उन्होंने अबाउट फिल्मों के लिए 2,422 से ज्यादा गाने गाए पाकिस्तानी फिल्मों के लिए. 1,148 films in total. वैसे ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, सो इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज स्पेयर मी फॉर दैट. अब हम बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ. ये बात आपको बताती चलूं फिर से, 3:30 से 4 बजे तक लेके आऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास फॉर यू अकॉर्डिंग टू द TRP charts. बनी रहिए, आई हैव लॉट्स ऑफ न्यू एंट्रीज इन आर लिस्ट.

जी हाँ, दोस्ती तो वैसे कुछ ऐसा ही रिश्ता है, और नाजिया और जुहेब की आवाज़ में जब ये दोस्ती का गाना बजता है तो वन ऑफ दोज इनिशियल दोस्ती सॉन्ग्स जिन्होंने दोस्ती की जो फील है उसको डिफाइन किया इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड ऑफ कोर्स अ म्यूजिकल वे. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और इस गाने के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. अली, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और मुझे याद दिलाने का कि अभी एक सज्जाद अली का गाना प्ले होना बनता है. सो आपके लिए सज्जाद अली का गाना प्ले कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर आपको पेपर वर्क के साथ डील करना है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना है, लीगैलिटीज़, देर इज़ सो मच दैट यू हैव टू गो थ्रू. सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए और लेट अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज ऑफिस डू द रेस्ट फॉर यू. ना सिर्फ ये कि वो आपका केस फाइल करेंगे, आपको बेस्ट कॉम्पनसेशन दिलाएंगे जो आपके सिनारियों में बनती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. सो इस विन विन सिचुएशन को इस स्ट्रेसफुल टाइम में एक राहत की खबर आपको दे रही हूँ, एक विन विन सिचुएशन दे रही हूँ. आप अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल कीजिए फॉर अ कंसल्टेशन और बात कीजिए, देखिए वेर यू स्टैंड. दैट नंबर इज 4693005046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज attorneyomar.com. अली जी, दिस वन इज फॉर यू.

0: Thank you so much, Pallavi, aapki phone ka, for sharing your favorite dramas with me. And bas, agle 5 minute mein main enter kar rahi hoon hamare top 10 trending dramas according to the TRP charts. Kuch naye drama is baar add hue hain, aap kahin mat jaiye, ye agla aadha ghanta, agar aap drama lover hain, Pakistani drama lover, to aap bilkul miss nahi kar sakte. It is going to be an absolute brilliant chart jo main aapke sath share karne wali hoon. Bane rahiye, stay tuned.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
4: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
6: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
3: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
13: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
14: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
13: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
14: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
15: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
15: Barista House, richness of biryani bliss.
16: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
17: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
18: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
17: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
18: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
19: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
20: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.
21: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funisia Radio.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio aur segment aa chala hai ji jab main aapko batane wali hu the top 10 trending dramas according to the TRP charts for last week yani ke the week of September 14th till September 20th aur TRP charts mein kuch nayi additions hui hain kuch purane drama jo complete ho gaye the wo aahista aahista nikal rahe hain aur naye drama add ho rahe hain. Let's begin with drama number 10 according to the TRP charts. 7 average TRP के साथ ये ड्रामा रहा 10वें नंबर पे. दिस इज ड्रामा सीरियल नश्तर और जी ये फ्राइडे और सैटरडे को आता है 8 बजे शाम ऑन जियो एंटरटेनमेंट पे और अभी ये महीना पहले 21 अगस्त से ये ड्रामा शुरू हुआ है. इसमें हमें नजर आ रहे हैं दानिश तैमूर और साथ उनके देखिए नाम मैं अक्सर इनका भूल जाती हूँ फिर रवानी में आता है जैसी नाम याद आता है मुझे इन लड़की का मैं आपको बताती हूँ. बहरहाल द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वेरी रिच मैन एंड मिडिल क्लास गर्ल जो कि अभी स्टूडेंट हैं और किस तरह से उन दोनों की लाइफ्स क्लैश होती है. एक रिवेंज प्लॉट सामने आता है और रिवेंज प्लॉट में आगे क्या होगा ये है डायनामिक्स इस कहानी की. मिक्स्ड रिव्यूज इसको यूं मिल रहे हैं कुछ लोगों को ये रिवेंज प्लॉट बहुत अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा यू नो क्रेजी सा लग रहा है और कुछ लोग जो दानिश तैमूर के फैन हैं उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज दानिश तैमूर के ड्रामे की पॉपुलैरिटी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो दानिश तैमूर के अपने फैंस होते हैं बिकॉज दे जस्ट डू नॉट विश to leave him alone. So Danish Taimur, known for his intense and charismatic anti-hero kind of alpha male jo unki appearances hoti hain. Haan, naam yaad aa gaya mujhe. Anmol Baloch hain ladki jo heroine hai is drama mein. Pehli baar Anmol Baloch aur Danish Taimur ki jodi ek saath nazar aayi hai. Dekhne walon ko wo jodi bhi fresh lag rahi hai aur maza aa raha hai. So ek aur bada interesting jo character isme kar rahi hain wo Naima Bhatt hain. Agar aapko yaad ho wo drama Fahad Mustafa aur Hania Amir ka मैं कभी कभी मैं कभी तुम वो जो ड्रामा था उसमें जिन्होंने भाभी का किरदार अदा किया था जो कि रिच सिस्टर इन लॉ बनी थी वो है नईमा भट्ट. सो नईमा भट्ट को भी इस ड्रामे में पसंद किया जा रहा है. इफ़ यू हैवन्ट स्टार्टेड वॉचिंग इट देन नश्तर इज वन फॉर यू. अच्छा नंबर 9 पे मैं थोड़ा सा हैरान हुई कि ये ड्रामा एकदम से दूसरी तीसरी पोजिशन से 9वें नंबर पे कैसे आ गया बट ऑडियंस हमें जी अब जो चीज़ हमें पसंद आए कुछ जैसे ही बोरिंग हो जाती है तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं कि भाई यार अब ये बोरिंग हो रही है. तो मेरा ख्याल है ये पिछली दो एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी एक ही मंजर को और एक ही सीन को देख देख के ऑडियंस थोड़ी सी बोर हो गई है. और ये ड्रामा है आपकी इज्जत. फ्राइडे और सैटरडे 8 बजे शाम को आता है और इसमें हमें ऑफकोर्स नजर आ रहे हैं एहसन खान और उर्वा हुसैन जो कि एक बेहतरीन रोल में है. 15वीं 16वीं एपिसोड तो इस ड्रामे की खैर आउटस्टैंडिंग थी फिर 17, 18, 19, 20 थोड़ी सी स्लो हो गई जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई मूव ऑन जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ाइए इसको कुछ आगे बढ़िए देखिए क्या होता है. पेंड बाय उमेरा अहमद सो वी आर एक्सपेक्टिंग स्टिल गुड थिंग्स फ्रॉम द ड्रामा. इसी के साथ आठवें नंबर पे ये नवा नंबर था. आठवें नंबर पे एक नया एडिशन है और वो है गुलबहार. वेंसडेज और थर्सडेज को ये ड्रामा शुरू हुआ है जी. 16 सितंबर से ये शुरू हुआ है और वेंसडेज थर्सडेज को आता है शाम 8 बजे ऑन हम टीवी. और कोर प्लॉट जो है इसका वो है इट्स लाइक इट फॉलोज अ डीपली इन लव मैरिड कपल जिसको सनम सईद और इमाद इरफानी ने प्ले किया है. सनम सईद और इमाद इरफानी का अभी एक ड्रामा गुजरा था जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया जिसमें इमाद इरफानी एक क्रेजी हस्बैंड बनते हैं और सनम सईद उनके साथ डील कर रही होती हैं. वो मेरा अहमद का ड्रामा था. देखिए मेरे जहन से नाम निकल रहा है उस ड्रामे का. लेकिन एक बार फिर सनम और इमाद इरफानी की जोड़ी हमें नजर आई है. दे आर यू नो अ वेरी हैप्पी कपल बट दे आर फेसिंग सिवियर फैमिली एंड यू नो सोसाइटल प्रेशर्स रिगार्डिंग चाइल्डलेसनेस. और फिर क्या होता है उनकी जिंदगी में दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा. आते ही ये ड्रामा जो है वो 8वीं पोजिशन पे पहुंच चुका है. सो दैट वॉज 8, 9, and 10. अब हम जब इस गाने के बाद वापस आएंगे तो आई विल टेल यू 7, 6 and 5.

And with that, number four पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है, एकदम से जंप मारी है जी इसने, फोर पे पहुंच गया है. दिस इज ड्रामा सीरियल लीडर, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है. हम टीवी पे आता है और संडेज को एक ही दिन आता है, बस 8 बजे शाम. और देखिए, मार्च 28 मार्च से ये ड्रामा शुरू हुआ था एंड आज सितंबर 20 तक की मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ. और कॉन्स्टेंटली ये ड्रामा टॉप 10 की लिस्ट में रहा है. कोई एक हफ्ता भी मैंने नहीं देखा कि लीडर जो है वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकला हो. सो इट इज़ रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो मैं आप लोगों से डालस में, जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो जब ड्रामों की बात होती है तो बहुत सारे लोग लीडर देख रहे हैं. अली रज़ा एज़ मंसूर, किंजा हाशमी एज़ रुबाब, फरहान ताहिर, अली सफ़ीना, साकिब समीर, और भी बेहतरीन स्टार कास्ट है इस ड्रामे की. स्टोरी जो है वो डेफिनेटली यूथ के ऊपर बेस्ड है, कि यूथ एक मंसूर जो हैं, अली रज़ा, वो एक फार्मर के बेटे हैं और किस तरह वो आते हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट बनते हैं, रेवोल्यूशनाइज करते हैं चीज़ों को, और किस तरह जो बड़े बड़े वहाँ पे पुराने लोग बैठे हैं, फ्यूडल्स बैठे हैं आप कह लीजिए, उनके चैलेंज पावर को कैसे चैलेंज किया जाता है और वो कितने इनसिक्योर होते हैं और फिर क्या होता है. दैट इज़ वॉट पीपल आर लविंग इट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग द केमिस्ट्री बिटवीन अली रज़ा एंड किंजा हाशमी. वैसे अली रज़ा के बारे में मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूं कि जिस भी हीरोइन के साथ अली रज़ा काम करते हैं उनकी केमिस्ट्री रॉकिंग होती है. दैट इज अ गारंटी. अली रज़ा जिस ड्रामे में होंगे, केमिस्ट्री तो रॉकिंग होने ही वाली है. मैंने तो अब तक यही देखा है, आप बताइए मुझे, डू यू अग्री और नॉट. अच्छा जी, इसके साथ तीसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा वो है टूटा हुआ दिल. जी हाँ, टूटा हुआ दिल कोई मतलब अभी तक 5 से नीचे की नंबर पे हमें नज़र आता रहता था, लेकिन एकदम से टूटा हुआ दिल को लोग काफ़ी पसंद करने लगे हैं और लिस्ट में ऊपर चला गया. आई थिंक जैसे ही जंजीरें निकला और कुछ और एक दो ड्रामे निकले तो जो है डॉक्टर बहू निकला, तो फिर टूटे हुए दिल ने अपनी जगह ऊपर जाता गया. नाज़िश जहांगीर और आगा अली इसमें हैं, अरीज़ अहमद हैं, बाबर अली हैं, वनीज़ा सत्तार हैं. और प्लॉट जो है वो जो लीडिंग लेडी हैं, समीन और इदरान के ऊपर बेस्ड है. टू इंडिविजुअल्स कैरिंग डीप इमोशनल वूंड्स एंड हार्डशिप्स फ्रॉम लाइफ, और उनकी पाथ कैसे मिलती है, कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं रियली. मतलब इट्स अ टिपिकल ड्रामा जो लोगों को देखना पसंद है. फॉर्मूला बहुत टिपिकल है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट है. हाईएस्ट रेटेड लॉन्ग फॉर्मेट सीरियल बना है ये 2026 का, पुलिंग इम्प्रेसिव टीआरपीज और फॉर द इवनिंग स्लॉट. एक बार फिर आपको बताती चलूं, डेली आता है ये ड्रामा. दिस इज अ डेली सोप, 7 बजे शाम. सो इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूं कि डेली आने वाले ड्रामा, ये तो खैर डेली आता है 7 बजे, और वो जो दूसरा मैंने आपको बताया था मैं तेरा, वो डेली आता है 9 बजे. ये दो ड्रामे ऑडियंस एक्चुअली काफी पसंद कर रही है. तो और नंबर 2 और नंबर 1 पे जो ड्रामा स्टैंड कर रहे हैं वो बात करते हैं अभी, बस इस गाने के उस बार.

0: And with that, we are heading on to a short break. लेकिन उससे पहले top two trending dramas जो के रहे मेरे और आप के सबसे करीब, that is दरे निजात number 2. Friday और Saturday 8 PM ARY Digital पे ये drama आता है. दुरिफिशा सलीम, शहरियार मुनवर और नमीर खान हमें इसमें नजर आ रहे हैं. Brilliant acting, brilliant dramatization, मतलब high voltage drama आपको इस drama में मिलेगा. So जरूर watch कीजिए अगर आपने नहीं देखा. और उमेरा अहमद का लिखा हुआ drama है, तो आपको कुछ सेंस भी बनेगी. ऐसे ही नहीं कि बस यहीं से इधर उधर से कैरेक्टर्स इधर उधर उछल के आ रहे. शी राइट्स रियली सेंसिबल ड्रामास. तो देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा और कैसे बनेगा ये रिश्तों का ताना बाना जो कि वो बुनती हैं. अच्छा, नंबर वन पे जो ड्रामा है जी, वो अभी तक उसने अपनी नंबर वन की पोजिशन, हालांकि दरे निजात वॉज 14.4 एवरेज TRP एंड दिस वन बस 13.7 हो इस 14.7. ऑलमोस्ट दरे निजात ने इसे बीट ही कर दिया है. मुझे लगता है अगले हफ्ते नंबर वन पे चले ही जाना है दरे निजात ने. बस 13.7 हो में फरहान सईद और सना जावेद हैं. ड्रामे की 42 एपिसोड्स हो चुकी हैं. आई थिंक इट इज टाइम टू रैप अप द ड्रामा. स्लो हो गया है, बिला वजह उसको ड्रैग कर रहे हैं. एक अच्छी चीज बनाई है उन्होंने. वी हैव बीन अ फैन ऑफ बस 13.7 हो. आई जस्ट होप के इट रैप्स अप नाइसली एंड क्विकली, बिकॉज अब बहुत कुछ हो गया है ड्रामे में. तो अगर आपने देखना नहीं शुरू किया तो जरूर चेकआउट कीजिए. स्टार्ट टुडे, बिंज वॉचिंग शुरू कर दीजिए. दिस इज बस 13.7 हो, नंबर वन ट्रेंडिंग ड्रामा ऑन द TRP लिस्ट. सो बस 13.7 हो, दरे निजात, टूटा हुआ दिल, दारा द टॉप 3 ड्रामास. विद दैट वी आर रैपिंग अप दिस सेगमेंट. 4 बजे के बाद मैं भी हाजिर होती हूँ विद ट्रॉफी ट्रैक, सम ब्यूटीफुल अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स एंड मूवीज. स्टे ट्यून्ड.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
11: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
0: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
12: Kaise?
0: Page 3 eatery?
12: No, not another restaurant again.
0: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, glass Pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
12: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
17: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
18: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
19: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर अ कम्युनिटी एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस, यू वांट अ फर्म व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू इमिग्रेशन लॉ, लाइक द लॉ ऑफिसेस ऑफ सीमा मेहता। From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
20: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
21: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

और इसी के साथ तमाम फूड लवर्स जरा गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए. अगर आप इंडियन फूड में यू नो चाहते हैं बहुत मज़े के स्पाइसेस और लॉट्स ऑफ डिलिशियसनेस, देन आई हैव गॉट अ प्लेस फॉर यू. पेज 3 ईटरी इज ब्रिंगिंग द इनक्रेडिबल फ्लेवर्स ऑफ मुंबई एंड लखनऊ राइट हियर इन हब 121 इन मेकिनी. तो अगर आज चाट का मूड है, डन. अगर आपने कबाब्स खाने हैं, एब्सोल्युटली. स्मोकी तंदूरी डिशेस, एरोमेटिक बिरयानीज और साथ में सम अमेजिंग हैंडक्राफ्टेड ड्रिंक्स, क्या बात है. सब कुछ मिलेगा आपको, वेदर इट इज डेट नाइट डिनर विद फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ एक फन इवनिंग. पेज 3 ईटरी डेफिनेटली वो जगह है जहां आपको जरूर जाना है. सो नेक्स्ट टाइम जब दिल करे कि आज कुछ डिलिशियस खाने का मूड है, तो आपको पता है आपको क्या जाना है, कहां जाना है. पेज 3 ईटरी एट हब 121 इन मेकिनी. एंड फॉर द मेन्यू सिंपली विजिट page3eatery.com. दिस इज अ प्लेस मुंबई और लखनऊ के फ्लेवर्स मेकिनी में आपके लिए.

कुछ बेहतरीन फिल्मों के बेहतरीन गाने ट्रॉफी ट्रैक सुन रहे हैं आप राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसों की बात, फाइनेंसेस की बात, चाहे बात हो टैक्सेस की, अकाउंटिंग की, पेरोल की, बुक कीपिंग की, बिजनेस या इंडिविजुअल्स, एंड यू वॉन्ट समवन दैट यू कैन ट्रस्ट, तो फिर नाम आता है एजी फिनटेक्स का. एजी फिनटेक्स ऑफर्स ट्रस्टेड टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुककीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस स्टे ऑर्गेनाइज्ड, इन्फॉर्म्ड एंड फाइनेंशियली ऑन ट्रैक. तो अगर आपको फाइनेंसिस के मामले में चाहिए प्रोफेशनल गाइडेंस और रिलायबल सर्विस, देन कॉल एजी फिनटेक्स 469-942-9888 469-942-9888 is that number, या फिर सिंपली विजिट agfintechs.com, your trusted partner for tax, accounting and business solutions. Here is another beautiful number, I just absolutely love this one.

और अगर हेल्थ की बात आए तो एक जल्दी से क्विक रिमाइंडर आपको देती हूँ, इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपकी इंश्योरेंस नेटवर्क में नहीं आते तो नो वरीज एट ऑल. पैशन हेल्थ डायरेक्ट, they offer premium care for you for $85 a month. This includes primary care, preventive care, medication management, telehealth, aur bhi bahut kuch. Aur good news ye hai ki Irving aur Frisco ki locations are open Saturdays and Sundays too. So weekday busy ho to no problem at all, aap weekend pe bhi Passion Health Primary Care visit kar sakte hain Irving aur Frisco mein. So give them a call if you have any questions or you want to make your bookings. That is 214-666 6259 214-666-6259. यहाँ आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर passionhealthphysicians.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. आई हैव टू टेल यू दैट पैशन हेल्थ डायरेक्ट इज नॉट अ हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जी ये. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. गिव देम अ कॉल, सेंड देम अ टेक्स्ट 214-666-6259.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, your growth, our strategy. AG FinTechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
9: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: flavor on. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: कितने आदमी थे?
6: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

सेलिब्रेशन छोटी हो या बड़ी, मेमोरीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए. जी हाँ, वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल ओकेजन, Vanessa Events takes care of it all. Venue, decor by signature events, photography, hospitality and catering exclusively by Basera Grand. So agar aapka koi bhi event aa raha hai and you want to enjoy that event and let somebody else take care of the rest, then Vanessa Events is the place you need to call. Hari Basera sahab ko call kijiye at Vanessa Events. That number is 469-442-8770 or देखिए किस तरह Vanessa Events आपकी पार्टी की सारी टेंशन आपके सर से उतार के खुद ले लेते हैं और आपको करवाते हैं पार्टी एंजॉय. यू मेक ब्यूटिफुल मेमोरीज वाइल दे डू द रेस्ट. दे आर योर सेलिब्रेशन पार्टनर्स. एंड विद दैट आई एम गोइंग टू टेक यू टू द वेदर अपडेट. इस वक्त जी वेंसडे सेप्टेम्बर द 23rd 4:49 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू वेदर बग सिटी ऑफ मेकिनी में 96 डिग्रीज है. However, it feels like 103. Triple digit से नीचे हमारी फीलिंग आ ही नहीं रही है, सारी वहीं अटक गई है. दिन रहा मोस्टली सनी और आज का हीट इंडेक्स वैल्यूज अप टू 104. पार्टली क्लाउडी रहेगी शाम, देन बिकमिंग मोस्टली क्लाउडी. लोज इन द लोअर 70s. पॉलन काउंट इज 10.8, आई एम सॉरी, विच इज वेरी हाई ऑफ कोर्स. बहुत सारे लोग पॉलन से परेशान हैं. आप अपनी रेमेडीज ले लीजिए इफ यू आर वन ऑफ दोज. यूवी इंडेक्स इज 8, विच इज वेरी हाई. कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी. हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सनराइज आज का हुआ 7:15 सुबह 7:15 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 7:22 PM.

जी हाँ, कुछ खरीदने बेचने के लिए पैसों के बारे में जानना बहुत जरूरी है. और देने लगी हूँ आपको करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो जी, इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.75 पे स्टैंड कर रहा है, इंडियन रुपी 95.89 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 1.41 कनेडियन डॉलर्स ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर. पाकिस्तानी रुपी 277.46 पाकिस्तानी रुपीज स्टैंडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर, जबकि नेपालीज रुपी 153.50 पे स्टैंड कर रहा है. बांग्लादेशी टका 122.90 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग for 1 US dollar. And with that, let me give you the gold price update as well. Gold price per ounce right now, according to goldprice.org, is $4,287.09. Jabki 1 gram sone ki keemat is waqt hai $137.83. Kal ki nisbat 1 gram sone ki keemat mein $1.69 ki kami hui, jabki 1 ounce sone ki keemat mein $59.49 ki kami dekhne ko mili. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Suneri Kiran.

0: पीछे।
1: और इसी के साथ आपको ट्रैफिक अपडेट देती चलूं बिफोर आई से माय बाइस टू यू। तो जी ट्रैफिक में हमें कुछ इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट दैट आई कैन सी इज एट 35 ईस्ट टुवर्ड्स गार्डन रिज बुलेवार्ड नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड आउट ऑफ, देखिए नौ लेन्स, टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग वन ऑफ द एग्जिट लेन्स। द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड हियर, सो प्लीज ध्यान रखिए अगर आप यहां पहुंचने वाले। There is another incident that has been verified about 25 minutes ago. That is at IH30 at Loop 12, west of eastbound. So, iski wajah se two lanes are blocked, including an exit lane. Once again, the severity of this incident is reported high as well. एक और इंसिडेंट जो हमें नजर आ रहा है, दैट इज ऑफ अ डिसेबल्ड व्हीकल। अब इस डिसेबल्ड व्हीकल की वजह से बहुत सारा बैकअप यहां पे स्पॉट पे नजर आ रहा है। IH30 टुवर्ड्स होराइजन रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड। और आपको पता है कि ट्रैफिक की सिचुएशन जो होती है इस वक्त ड्राइव रश आवर में, उसमें एक दो लेन्स और एक डिसेबल्ड व्हीकल कैन कॉज अ लॉट ऑफ बैकअप। सो देर इज अ लॉट ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट इज वेल। एंड अनदर इंसिडेंट दैट इज रिपोर्टेड एंड वेरीफाइड जस्ट नाउ अबाउट 10 मिनट्स अगो इज एट लूप 12 टूवर्ड्स ग्राउयलर रोड नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड। द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड, there is a lot of backup. और अभी अभी चूंकि ये incident verify हुआ है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा backup इस spot पे देखने को मिलेगा। But that's pretty much all, ये चार पांच incidents हैं जो मुझे roads पे नजर आ रहे हैं जो मैंने आपके साथ discuss किए। आप अपना ख्याल रखिए और please drive safe, be very careful, and I will see you tomorrow Thursday on afternoon drive time with Sunehri Kiran में। First Thursdays of the month we bring you Food Junction, the rest of the Thursdays आपकी फरमाइश पे वो 90s का Bollywood। Stay tuned and have a lovely evening.

वंडरफुल ट्रैक रीमा जी, आपकी रिक्वेस्ट कर दीजिए, हमने पूरी, दैट्स व्हाट वी डू। देखो रिक्वेस्ट भी पूरी होती है, आलू पूरी होती है, हलवा पूरी होती है, छोले पूरी होती है, बस मेरी ये नींद कमबख्त पता नहीं क्यों पूरी नहीं होती है, इसका कोई इलाज है तो बताओ। वैसे मेरी नींद पूरी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक दो महीने की छुट्टियाँ हों, ठीक है जी, पहाड़ों का व्यू हो, अच्छा खाना हो, फिर तो मज़ा आए। मतलब बंदा सोए तो स्ट्रेस फ्री सोए ना, इतनी टेंशनों के साथ बंदा कैसे सो सकता है। बट नन द लेस मैं आपको ये बता दूं, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी जी। व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ योर होम बाइंग नीड्स, योर स्ट्रेस कैन बी टेकन अवे बाय नवनीता खेमका, हु इज नाउ अ रियल्टर विद केलर विलियम। जी हाँ, हमारी अपनी नवनीता इज नाउ अ रियल्टर एंड शी कैन हेल्प यू गेट योर होम विद द प्लान एंड द एरिया दैट यू आर चूजिंग। उनकी स्पेशलिटी क्या है जी, पहले तो ये है कि मार्केट नॉलेज उनके पास काफ़ी है, क्रिएटिव मार्केटिंग के प्लान हैं उनके पास, एंड पर्सनलाइज गाइडेंस है, दैट कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। राइट योर स्टोरी विद हर, गिव हर अ कॉल 347-449-4242, दैट्स 347-449-4242, नवनीता।

भाई टाइम इतना एडवांस हो गया है कि मैं अभी इंडिया गया था मई में, तो वहाँ पे ना एक दुकान के बाहर लिखा हुआ था चैट जीपीटी विद एआई। मैं कहा माँ यहाँ यहाँ चैट जीपीटी विद एआई का क्या चक्कर है, ये तो दुकान है और यहाँ तो मिलती है चाट और समोसे पकौड़े। मैंने पूछा भाई साहब से, मैं कहा ये चैट जीपीटी विद एआई का क्या चक्कर है, वो कहता भाई साहब कुछ नहीं, चाट गरम पोहा टी विद अदरक एंड इलायची।

0: बंदा है बिंदास है जी, नाम मार बिंदास है। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मैं रहूंगा जी आपके साथ 7 बजे तक। आज बुधवार हो चुका है जी, मिड वीक, दैट इज वेंसडे, एंड वी आर सिटिंग ऑन सितंबर 23rd, एंड टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर मी, क्योंकि आज मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बर्थडे है, यानी कि माई फादर्स बर्थडे टुडे, एंड ही इज 72 ईयर्स ऑफ एज, बट गॉड इज काइंड टू हिम एंड काइंड टू अस। ही इज फिट, ही इज हेल्दी, एंड अभी भी मतलब फुल ऑन, यू नो, हमारे से भी ज़्यादा एनर्जी उनमें। ही लव्स फिशिंग, ही लव्स टू गो आउट टू यू नो प्लेसेस, एंड बड़ा गार्डनिंग का शौक है, और आजकल जो हमारा पेंट हाउस है वो भरा पड़ा है जी फूलों और बाकी चीज़ों से। ऑल थैंक्स टू माई डैड, हिज नेम इज़ माइकल दास। अगर आप उनको दुआओं में अपनी शामिल करना चाहते हैं आज के दिन, तो ज़रूर कीजिएगा। एंड आई एम विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दिस बर्थडे विश इज़ कमिंग फ्रॉम SFL वर्ल्ड वाइड। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग इन द नियर फ्यूचर, आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, या आपके कजन्स का बर्थडे है, फैमिली में किसी का बर्थडे है, कोई शादी होने वाली है, यू लुकिंग टू सेंड देम गिफ्ट्स, पर आप कह रहे हो यार मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में है, या इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है, होनोलुलू में है, जहाँ भी है, SFL वर्ल्ड वाइड कैन सेंड एवरीथिंग फॉर यू। चाहे देसी आउटफिट्स ढूंढ रहे हो, आप मिठाई भेजना चाहते हो, नमकीन भेजना चाहते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम एनी अदर कंट्री टू योरसेल्फ, or if you want to send this to any other country to your loved ones, worldwide shipping karate hain with the best cost, and the best part is doorstep pickup karte hain and delivery, to aapke ghar se samaan uthayenge, jahan aapko pahunchana hai wahan pahunchayenge. Ocean shipping bhi available hai for larger items, jaise ki puja ke mandir mangwane hain aapko, jhula, furniture, whatever you're looking to go ship or move, SFL worldwide can do that for you. 1-800-691-2335, ya fir simple hai, website ko yaad rakhiye, SFLworldwide.com. Let's see who we have with us this evening. Good evening to you, Faneja. Who's this? 1-800-691-3. Radio volume. Radio का volume कम करेंगे sir, तभी बात हो पाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मालिक।
1: मेरा नाम प्रणव देसाई है।
0: प्रणव देसाई साहब, कैसे हैं आप?
1: बस मजे में हूँ। मैंने आपको अभी इसलिए फोन किया क्योंकि मैंने सुना कि आपके पिताजी का बर्थडे भी आज है।
0: मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे, उनका जन्मदिन है जनाब।
1: या तो मैंने आज एक मैन्युफैक्चरिंग मैंने भी किया था मेरे बेटे का।
0: अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है उनका?
1: शाइव देसाई।
0: शाइव देसाई, शाइव को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। ओके जी,
1: थैंक यू, आपके पिताजी को भी
0: थैंक यू साहब। और आज के दिन मैं उनको याद कराना चाहता हूँ, जिनको भी मेरे साथ कंप्लेंट है ना, मेरे पापा को फोन कर लेना, क्योंकि कंप्लेंट अक्सर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाई जाती है। यू आर लिस्निंग टू द बिंदास शो।

0: करण औजला विद दैट ट्रैक तेरे नाल प्यार जटा ता इट इज कॉल्ड फॉर अ रीजन. आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है जी कि हम जो पंजाबी गाने हैं स्पेशली पंजाबी गाने इनका नाम जो है इंग्लिश में लिखा जाता है. अब जैसे अगला गाना है उसका नाम है बॉयफ्रेंड है, ये भी पंजाबी गाना, ये भी करण औजला साहब का है, पर बस आजकल ट्रेंड यही है कि हम इंग्लिश में लिखेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. ठीक है, ट्रेंडिंग है भाई, ट्रेंडिंग. अब वो 80s वाला ट्रेंड चला हुआ था, है ना, लोग फोटो खींच रहे लेफ्ट राइट, मैं भी था उसमें, कर करके कॉपी जी चैट जीपीटी चक फटे हैं. इनको बताओ कि आपने 80s वाले फोटो को तो एक्सपीरियंस कर लिया, पर 80s में आपको पता है बाथरूम की जो फैसिलिटी है ना, ये इतनी मतलब ताबड़ तोड़ नहीं होती थी भैया, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश, बड़ा बुरा हाल था मालिक. और आपको पता है उस टाइम पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी लोटा. और लोटे से याद आए वो अंकल लंबे बाल वाले गंजे, लोटा लोटा लोटा लोटा मैं अजी, कमाल का एक्टर है, कमाल के सिंगर है वो, मतलब अमेजिंग. बंदे को किसी ने समझाया भी नहीं कि रहने दे, पर आज देखो लोटा लोटा लोटा.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Dad, property papers kahan hai?
7: Laptop mein.
6: Investment?
7: Google Drive.
6: Insurance? Passwords?
7: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
6: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
5: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
5: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान.
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
4: ये क्या होता है?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: ये तारा वो तारा हर तारा.
15: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
16: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
19: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
18: Fikar not. We have the perfect solution.
20: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
21: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: We are taken from the movie Azad, and this was in the voice of Madhuvanti Bagchi. Somebody had called earlier, requested for that voice and that lady's song. So, mirko ye wala laga ke should be a good one to play for you all. And of course, this is your station, jispe aap apni vichar hamare sath share kar sakte hain. You can share your thoughts about whatever you're going through, yaar. Baat karne ka dil hai kisi se, we are always here for you. And like I said, pehle bataya aapko ke zindagi ki pareshaniyan hum apne aap zyada badhate hain. Actually, mein itni badi pareshani hoti nahi. And we just focus too much on the problem than the solution. That is the problem. Khair, agar aap kabhi ek accidental problem mein phas jayein, if you fall in a place, कोई स्लिप एंड फॉल आपका किसी बिल्डिंग में हो जाए, किसी की वजह से हो जाए, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद द अटॉर्नी हु हैंडल्स योर केसेस फॉर यू. हिज नेम इज अटॉर्नी ओमर ख्वाजा एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्सीडेंट्स, स्लिप एंड फॉल्स. नाउ ये तो हम कभी नहीं चाहते कि आपका एक्सीडेंट हो, बट इफ यू एवर इन्वॉल्वड इन वन, द पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज अटॉर्नी ओमर. ही इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एट attorneyomar.com. उनकी वेबसाइट पर चले जाइए एंड जस्ट रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि कभी ऐसी मुसीबत हो तो आफ्टर यूर सेटल्ड इन, यूर डन, यू नो, calling 911, making sure you're safe. The second thing you're going to do before you call your insurance company is call Attorney Omar. attorneyomar.com on the website for you. I'm going to play a song, aur iske saath saath maine aapse ek baat boli thi ki I'm going to do a giveaway. And I'm going to do this. Ek celebrity aaj apna janmdin mana rahi hai, and her birth name was Samarth, S-A-M-A-R-T-H, born on 23rd of September 1943, and she's a Bollywood actress. Apne time mein bahut sari filmein unhone ki, and she is somebody who has a film for award, aur uske liye main movies aapko bataunga, aapko pehchanna main kiski baat kar raha hu, theek hai. The second caller who gives me the right answer gets this giveaway from Mirage Lounge. Now Mirage Lounge is located in McKinney, aur ye aapko de rahe hain $20 off your $50 dine in bill. Hookahs premium quality ke wahan aapko milenge, delicious food jo main kha chuka hu, cocktails are to die for, live music, DJ nights, they host them quite regularly, happy hour hamesha chalta hai Monday to Thursday 11 a.m. to 6 p.m. or ladies night and college night, they host that as well. Right now, if you give me the answer to my question, which is whose birthday are we celebrating when I tell you these movie names, remember her birth name was Samarth, born on today's date, 23rd of September 1943. Some of the movies that she did: Mere Jeevan Saathi 1972, Do Chor, Uske Saath Saath Hathi Mere Saathi 1971, Jeene Ki Raah, Nayi Roshni, Rajkumari, Kadam Phool, Pratham Kadam Phool, and और कौन सी बताऊँ मैं आपको, बाहरें फिर भी आएंगी, जूल थीफ, इफ़ यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट गिव मी अ कॉल. इतने टाइम में हम सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से एक प्यारा सा गाना, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. लेट्स सी हू डू वी हैव फर्स्ट हियर. गुड इवनिंग फनेजा, हु इज़ दिस?
1: दिस साइड रुचिका.
0: रुचिका जी कैसी हैं?
1: अच्छी, आप बताइए.
0: एंड द आंसर इज तनुजा. आंसर इज तनुजा. रुचि जी, रुचिका जी, आप कॉलर नंबर वन है, बट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग. लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन नंबर टू, हु कैन टेल मी इफ दिस इज द एक्ट्रेस दैट आई एम लुकिंग फॉर. गुड इवनिंग, रेडियो का वॉल्यूम
2: वन है, बट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग.
0: रेडियो, रेडियो, हेलो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो मालिक, प्रभु दाता भगवान मेरे मालिक नहीं सुनते. देखो ऐसा होता है जब रेडियो का वॉल्यूम नहीं कम करते, मुझे आगे जाना पड़ता है. गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस?
3: माय नेम इज रुपेश.
0: रुपेश भाई क्या हाल?
3: बस बढ़िया, आप बताओ. मेरे भैया
0: ऊपर वाला मेहरबान, खुली हमारी दुकान, नाम मालूम है आपको?
3: तनुजा
0: इज द राइट आंसर ब्रदर. मिकिनी जा सकते हैं?
3: हाँ जी, हाँ जी, श्योरली.
0: राइट, होल्ड ऑन, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर. Yes, it is indeed Tanuja celebrating her birthday today. She is 83 years of age and a lot of movies to Bollywood by her, jaise ki Rajkumari, Deya Neya, Do Chor, and Hathi Mere Saathi, of course, a very popular one, Jewel Thief, another one. Happy birthday, Tanuja ji, from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas. Yeah.

इनके दिल को तो चैन आ जाएगा, पर अगर आपके दिल में कौमाऊ होता है या आपको लगता है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, यू लुकिंग फॉर अ गुड पीसीपी, देन आई वुड रेकमेंड डॉक्टर मंदीप आचार्य हु इज विद द लिनोक्सी मेडिकल एंड टेक्सास प्राइमरी केयर. दे हैव टू लोकेशंस इन फ्रिस्को फॉर यू, वन इज ऑन मेन स्ट्रीट, द अदर वन इज ऑन काइजर वे, एंड ही इज अ एक्सलेंट डॉक्टर. आई यूज हिम पर्सनली एज माई पीसीपी एज वेल, एंड समबडी हु इज डन अ लॉट ऑफ यू नो वर्क इन द कम्युनिटी चैरिटी वाइज अगर बात की जाए, बट आई थिंक हिज नॉलेज द वे ही इज केप्ट हिज क्लिनिक में सारी फीचर्स आपको इनसाइड द क्लिनिक मिलेंगी, जैसे कि एक्सरे फैसिलिटीज, सीटी स्कैन, एनी ऑफ योर ब्लड वर्क, एंड दे ऑल्सो टेक वॉक इन पेशेंट्स. अगर आपके पेरेंट्स इंडिया से आए हैं या कहीं और से आए, यू हैव गेस्ट विजिटिंग एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ राइट अवे विद नो वेटिंग एंड नो डाउन टाइम, देन यू कैन गेट विद टेक्सास प्राइमरी केयर. 7 days a week ये ओपन है एंड दे टेक पेशेंट्स वॉक इन एज वेल. यू डोंट नीड एनी अपॉइंटमेंट इफ यू आर वॉकिंग इन. एंड आई वुड सीरियसली, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पी सी पी हु स्पीक्स योर लैंग्वेज, देन डॉक्टर आचार्य इज डेफिनेटली अ पर्सन टू गो विद. टेक्सास प्राइमरी केयर इज द नेम ऑफ द फेसिलिटी एंड दे आर लोकेटेड ऑन 777 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. लेके चलते हैं जी आपको अगले गाने की तरफ. दैट्स वॉट वी डू यार, गाने और कुछ बातें खास, एंड ऑफकोर्स अपडेट्स that keep you informed of what's happening in the community. Phir film aayi thi ek nayi brand new which is called Vibe. Isme hai ji Kunal Khemu and he's also the director of the film. The track is called Aisi Meri Vibe. Here we go.

0: सजनी रे का हम तुमको बता सकते हैं, आई लव यू, वो वाले एक्टर भी इस फिल्म में है। नहीं देखिए तो जरूर चेक कीजिएगा, मजा आएगा आपको। फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, मजेदार बनाई गई है। आपको पता है ये जो बातें करता रहता ना ब्रूस ली, जेट ली, ये बाद में आए हैं ब्रो। इससे पहले इनकी और लंबी फैमिली है, ब्रूस ली, जेट ली। फिर आपको मैं बताता हूँ, देखो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड डोंट फॉरगेट फाइनेंशियली। आज बर्थडे एक और है किसका, ये देखो।
1: वो भला हो जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हो जी। मैं रुक्मणी का मामा हूँ, नाम है मेरा संपत, संपत लाल।
2: अच्छा
1: वो भला प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और इनका फिल्मों में नाम प्रेम चोपड़ा ही रह गया। काम ऐसा किया है इन्होंने कि मतलब वैसे बड़े शरीफ तबीयत के इंसान, पर जब भी ये स्क्रीन पे आते थे तो पता लग जाता था कि आप कोई कांड होने वाला है। प्रेम चोपड़ा साहब विलन के बहुत सारे रोल, 60 ईयर्स का करियर इन द इंडस्ट्री, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ही इज बॉर्न इन लाहौर, पंजाब, इन द ईयर 1935, 23rd of September। ही इज 91 ईयर्स ऑफ एज। बहुत सारी फिल्में इनके नाम हैं, जिसमें से कुछ हैं उपकार, दो अजनबी, बॉबी, क्रांति एंड मैनी मोर। गुड इवनिंग फन एशिया, हुज दिस?
3: I'm with insurance.
0: अरे भाई ये तो मुझे कुछ बेचने आ गया। इसको मालूम नहीं कि ये तो गलत नंबर लग गया इसका। इट्स ओके, हमें तो मालूम है ना गलत नंबर लग गया, तो लो हम ये लगा रहे हैं।

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: वी नीड टू टॉक।
4: अब क्या हुआ?
3: नथिंग, इट्स नॉट यू।
4: ओह नो,
3: इट्स द डिस्टेंस।
4: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
3: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
2: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: भूख लगी,
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Sadia!
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
11: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: एक ना फिल्म आई थी जुड़वा, उसमें ना एक सीन था, जॉनी लीवर साहब ना पुलिस में थे और थिएटर, मतलब मेरा ख्याल है जुड़वा है वो, उसमें जॉनी लीवर साहब थाने में हैं और उनको बाथरूम जाना है, पर जब भी वो थाने की बाथरूम की तरफ जाते हैं कोई ना कोई घुसता रहता था, तो वो डायलॉग मारते हैं कहाँ जा रहे हो, एयरपोर्ट, कितनी फैसिलिटीज़ होती है ना वहाँ पे। तो ऐसी एयरपोर्ट पे एक बंदा फैसिलिटीज यूज़ कर रहा था, और एक्चुअल में ना इंडिया में एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब 90s के बाद का टाइम, जब 2000 के बाद लेट्स से, दी पब्लिक रेस्टरूम्स वर बेस्ट इन द एयरपोर्ट, उसके बाद बाकी जगह सेट होना शुरू हुआ। बट ऐसे ही बंदा एक बेचारा अपना बाथरूम यूज़ कर रहा था, टॉयलेट में जाके बैठा है, तो आवाज़ आती है साथ वाली स्टॉल से, क्या हाल है? आदमी घबरा के बोलता है, ठीक हूँ भाई। फिर आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो? कहता है, भाई ज़रूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज़ आती है, मैं आ जाऊँ? वो कहता है, यार नहीं नहीं भाई, मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर आवाज़ आती है, अरे यार मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, कोई आदमी साथ बैठा मेरी हर बात का जवाब दे रहा है।
1: प्यास है।
0: बताओ, बंदा फोन भी नहीं कर सकता, अपनी बीवी को बात भी नहीं कर सकता, साथ में बैठे पटर पटर पटर पटर लगाइए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं फंस गए हो, बड़ी मजबूरी में हो, तो मैं क्या करूं, अपना कोई हल निकालो।

बंदा बिंदास है जी, नाम अरविंदास है, शो का नाम द बिंदास शो, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं रहूंगा जी आपके साथ 7 बजे तक आज की शाम। कुछ कुछ गाने मैंने अपने सुनाए जी, कुछ आपकी पसंद के चलाए। सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ तनुजा जी, ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। साथ साथ में प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन सोनू निगम का शो आ रहा है। यार आप लोग क्या कर रहे हो, टिकटें नहीं ली तो फिर फटाफट ले लो, क्योंकि ये शो तो सोल्ड आउट हो जाएगा। दिस इज गोना बी दिस सैटरडे 26th of September एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इन एलन। आपने अभी तक टिकटें नहीं ली हैं तो अभी बोल रहा हूँ, जाइए। वेबसाइट का नाम है ticketmaster.com, गो देयर, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड, सेलेक्ट योर सीट्स एंड गेट द बेस्ट सीट्स इन द हाउस। अगर आपको ज्यादा बड़ा ग्रुप है, कॉल करना है किसी को, बात करके टिकटें लेनी है, 1-855-360-SHOWS, that's 855-360-SHOWS। शो का नाम रेवोल्यूशन, बिकॉज व्हेन सोनू निगम केम टू इंडस्ट्री, वाकई अपने साथ एक रेवोल्यूशन लेके आए। इतनी अच्छी आवाज, सो मेनी वेरिएशंस टू हिज सॉन्ग्स, एंड इतने प्यारे प्यारे गाने जो हम सब ने गुनगुनाए हैं अपनी लाइफ में, वो सब साथ गाएंगे, मिलके गाएंगे। एंड दैट इज गोना बी टुमारो, दिस सैटरडे 26th of September, 8:30 PM ऑनवर्ड्स, लाइव इन कॉन्सर्ट। इट इज सोनू निगम, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम सोनू पाजी, कमिंग योर वे। हम पंजाबी हैं, हम सोनू निगम को भी सोनू पाजी कह देते हैं।

Wonderful track, wonderful voice. Sonu Nigam live for you this Saturday at the Texas Credit Union in Allen. Get your tickets right away, and that's going to be at Ticketmaster.com. Don't delay it, bhai, kyunki ye tickets jo hai bilkul sold out hone wali hai. You would not get tickets on the last day, so please don't wait till then. This part of our show is brought to you by none other than SFL Worldwide, jinke baare mein aapko bata chuka hoon ji. They bring you some wonderful options when it comes to getting your stuff delivered. Ya yahan se kuch mail karna hai, anything from a needle, a letter, to a whole home can be moved with SFL Worldwide. And you should also take note of Hoko, which is a brand new restaurant. India mein khub sans, you know, सनसनाती खेज सब खबरें सनसनी खेज हाँ सनसनाती क्या होता है सनसनाती भी होगा कुछ शायद चलो पर ये जी काफ़ी इन्होंने शोर मचाया इंडिया में एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फूड एंड सम ऑफ द आइटम्स दैट दे सेल आर वेरी यूनिक टू देम जैसे कि इनके पास एक आइटम है चना पूरी सैंडविचेस करीज एंड एक लेजेंडरी कोल्ड कोको जाइए वहाँ पे जाके ट्राई कीजिए लेट मी नो हाउ इट वाज स्टूडेंट्स विल गेट 20% ऑफ विद अ वैलिड आईडी ऑल द टाइम जी हाँ इफ यू आर अ स्टूडेंट यू लिस्टिंग 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू गो टू होको एंड शो योर स्टूडेंट आईडी एंड इफ यू आर एम्प्लॉई वेल यू गेट 20% ऑफ लंच पैक्स विच आर अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स दैट इज बिटवीन 9 to 5 विजिट 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000 और गेट द मेन्यू ऑन द वेबसाइट होको.us

यो यो हनी सिंह तो जैसे पता नहीं ऑटो पे ही बैठ गए हैं, एकदम निकल ही पड़े हैं, टकासा कासा कासा टोका टकीला, बट नाइस गाना मैन, हैज दी फुल एनर्जी, मतलब पार्टी अगर डाउन हो ये वाला गाना चला दो एकदम पार्टी उठ जाती है भैया। यो यो हनी सिंह फीचरिंग प्रियांशी, दिस वॉज कॉल्ड कासा तुपका अंथेमो, एंड इसमें डिस मार रहे हैं बादशाह भाई को, क्या हुआ वर्ड का चली नहीं, अः कोई बात नहीं यार, जिंदगी में दोस्त हैं, कभी कभी दोस्तों का टाइम बुरा होता है अच्छा होता है, पर दोस्तों को हमेशा अच्छा साथ रखना चाहिए। पता है क्या फ़ायदा होता है अच्छे दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त भी आ जाए ना, अच्छे दोस्त हो ना तो बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाता है बड़े भैया। इसीलिए कीप गुड पीपल विद यू ऑल द टाइम, मेक श्योर यू बिल्ड क्लोज रिलेशन विद योर लव्ड वंस एंड योर फ्रेंड्स। एंड ये पता है रिलेशन कैसे बनते हैं, ये रिलेशन निभाने से बनते हैं, रिश्ते तो बन जाते हैं, बट इफ़ यू डोंट कॉल, इफ़ यू डोंट शो अप, इफ़ यू डोंट यू नो कीप इन टच, दे आर गोना गो डाउन द ड्रेन। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, एंड अगर आपको ये लगे वो नहीं करता मैं क्यों करूँ, अरे भाई किसी को तो ये सेल्फलेसली करना पड़ेगा ना, दैट इज़ वेन थिंग्स गो वेल। सो मैं तो सेल्फलेसली अपने दोस्तों को हमेशा फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ, और वो रिश्ता बरकरार रखता हूँ, और जब जाता हूँ तो उन पर धौंस भी जमाता हूँ वो दोस्तों वाले के, हाँ भाई उल्लू के बट्ठे एयरपोर्ट आ। तो दैट्स हाउ इट गोज, कीप योर रिलेशंस, कीप योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू डू दैट, कर लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड जाते जाते ये बताऊँगा, अगर आपकी किसी से कोई नाराजगी है, somebody is upset with you, you're upset with somebody, you know what, crash this ego man, pick up that phone, बोलो उसको यार के यू नो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है यार, और इस ज़िंदगी का पता भी नहीं होता कब है कब नहीं है। तो जब तक है ये ज़िंदगी, मुझे लगता है कि हमें अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, यह हमारा हक है, दैट इज़ वॉट वी डिज़र्व, एज लाइफ इज़ गिवन टू यू, यू हैव ऑल द राइट्स टू फुलफिल ऑल ऑफ योर डिज़ायर्स, चाहे आपकी कोई ख्वाहिशें हैं, चाहे आपकी कोई एक यू नो गोल है दैट यू वांट टू अकॉम्प्लिश, चाहे आपके आसपास के रिलेशंस हैं, मेंटेन देम वेल, एंजॉय लाइफ बिकॉज इट्स ओनली वंस। विद दैट थॉट इज अ गुड नाइट, बाय बाय, अदियोस, आफ्टर मी इट इज इपी द हिपी फ्रॉम 7 to 10।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.